मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि यानी 9 मई सन 2026 सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि

प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब सुनते हैं आज का चिंतन। जीवन में अनेक बार हमें ऐसा लगता है कि परिस्थितियां सही नहीं हैं, सभी प्रयास भी किए जाते हैं समस्या का समाधान निकालने के लिए, परंतु कोई लाभ दिखाई नहीं देता। ऐसे में दुविधा को समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। अपना कर्म करते रहें, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और संयमित रहें। समय का एक ही नियम है कि वो बदलता अवश्य है। जैसे अंधेरी रात्रि के बाद उजले दिल का उदय होता है, ठीक उसी तरह विपत्तियों के बाद सुख का आना भी अवश्यंभावी है। तभी कहते हैं, कोई इससे बच सके ऐसा नहीं उपाय, समय चक्र है घूमता, करता सबका न्याय। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

हमें प्रत्येक दिन का आरंभ ईश्वर के सुमिरन से करना चाहिए। प्रभु का ध्यान धरें और निश्चय करें कि हमारा आज का दिन सार्थक हो। हर दिन ऐसा करने से ही हम अपने पूरे जीवन को अर्थपूर्ण, शांत और संतोषी बना सकते हैं।

जीवन में सकारात्मक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सकारात्मक होंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। कहते भी हैं कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। प्रभु का भजन करते हुए अपने कर्म और कर्तव्य को पूर्ण करना ही मनुष्य के लिए लाभदायक है।

हे ईश्वर, आप हमारे पालनहार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, आप महाकल्याणकारी हैं, आपकी इच्छा के बिन तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसीलिए हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को सद्बुद्धि दें और नेक कर्म करने की शक्ति प्रदान करें।

इस संसार रूपी भवसागर में हमारा मार्ग रोकने के लिए माया, मोह, लोभ, क्रोध आदि जैसे अनेक दानव हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति ही वो उपाय है जिस पर चलकर हम अपनी सत्य की राह प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सही अर्थों में सार्थक बना सकते हैं।

श्रोताओं, सुबह की इस अद्भुत बेला में ईश्वर का सुमिरन कर हम अपने दिन की मधुर शुरुआत करते हैं। मन बेशक अशांत हो, विचलित हो, दुविधा में हो, लेकिन जब हम प्रभु के नाम का भजन आरंभ करते हैं तो स्वतः ही धीरे धीरे हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। मन में भी आशावादी विचारों का आगमन होता है और हृदय में उत्साह का संचार हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे ईश्वर स्तुति का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे। मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात में आज जिक्र करेंगे कपास की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इसके बारे में कुछ सुझाव। मैं देखो पहले बात करा देशी कपास की उन्नत किस्मा की, तो इसमें है HD 123, HD 324, HD 432 और एक जो संकर किस्म है वह है AAH 1 नंबर। तो HD 123 जो किस्म है 165 दिन में पूरी हो जाए है, और औसत पैदावार की बात करें तो 9 क्विंटल प्रति एकड़ इसका हमने पैदावार भी मिल गया है। इसका रेशा 14.7 सेंटीमीटर लंबा, और 123 किस्म का जो पौधा है उसकी पत्तियां तना हरे रंग का वह है, पत्तियां मध्यम आकार की, फूल छोटा सफेद पंखुड़िया वाला और लाल हचिन्ह इस पे लिए उड़ो है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 150 सेंटीमीटर और टिंडा गोलाकार का हो है। HD 432 की बात करें तो यह फूल सफेद हो है, तना और पत्तियां हरे रंग की हो है, छोटे आकार का, फूल के आधार पे अंदर लाल धब्बा हो है और इसका तना मजबूत हो है, इसके कारण यह गिरती नहीं। 160-170 दिन में पक्कर तैयार हो जाए है। और यह जो किस्म है कपास और गेहूं और कपास राया फसल चक्र के लिए बहुत बढ़िया मानी जा है। औसत पैदावार की बात करें तो 8.5 क्विंटल प्रति एकड़ इसने पैदावार मिल गया है। अधिकतम पैदावार भी देखी गई है इसकी 14-15 क्विंटल तक इसकी पैदावार हमने मिल गया है प्रति एकड़ के हिसाब से। रेशे की बात करें तो रेशा भी इसका बहुत बढ़िया है, इसकी लंबाई 21.2 मिलीमीटर के करीब हो जाए। अगली जो संकर किस्म है इसमें AAH 1 देशी कपास की पहली संकर किस्म है और पूरे हरियाणा के लिए इसकी सिफारिश करी जा है। 150 सेंटीमीटर इसका ऊंचा पौधा हो गया है। औसत पैदावार की बात करें तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ और 38% इसमें रुई पाई जा है। इसका रेशा जो है 18.4 मिलीमीटर लंबा हो गया है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि संकर बीज का उत्पादन आसान और सस्ता पड़े है और बढ़िया किस्म यह मानी जा है। किस्म है AAH 1। फिर आ जाए हैं नरमा कपास की उन्नत किस्में और संकर किस्म। इसमें H1098 है, H1117 है। H1117 के पौधे की लंबाई 150-160 सेंटीमीटर लंबी हो जाए है। 4-6 वानस्पतिक शाखाएं हो हैं, फूल और परागकण क्रीम रंग के हो हैं, पत्ता मरोड रोग का प्रकोप इसमें कम हो है, और औसत पैदावार की बात करें तो इसमें 8-9 क्विंटल तक लेकर 15-16 क्विंटल तक भी इसकी पैदावार हम ले सके। अगली किस्म है H1226, हरियाणा में आम कास्त के लिए इसकी सिफारिश करी जा है। यह लगभग 165 दिन में पक्कर तैयार हो जाए है। पौधे की ऊंचाई 150-160 सेंटीमीटर और इसकी औसत पैदावार की बात करें तो कम से कम 9-10 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार भी हमने मिल जाए है। रेशे की लंबाई भी ठीक है 24.5 मिलीमीटर और रुई की मात्रा भी 33.7% इसमें पाई जा है। अगली किस्म है H1236, 130-150 सेंटीमीटर लंबाई का पौधा हो जाए है यू, और इसकी जो आखिरी चुनाई है वह 1/2 नवंबर तक पूरी हो जाए। औसत पैदावार की बात करें तो इसकी भी 9-10 क्विंटल प्रति एकड़ हमने पैदावार मिल जाए। अगली किस्म है H1300, यह किस्म पूरे उत्तर भारत के लिए सिफारिश करी जा है और 165-170 दिन में यह पाक के तैयार हो जाए है। इस किस्म के फूल करीम रंग के हैं, इसकी औसत पैदावार की बात करें तो कम तक कम भी इसकी 10-11 क्विंटल तक लेकर और 14-15 क्विंटल तक प्रति एकड़ हमने पैदावार इसकी मिल जाए है। किस्म है H1300। फिर है HHH 223, अमेरिकन कपास की संकर किस्म है या, और इसकी बिजाई भी 15 अप्रैल से 20 मई तक काम कर सके हैं। पौधे की ऊंचाई 150-160 सेंटीमीटर, औसत पैदावार की बात करें तो इसकी औसत पैदावार 9 10

0: क्विंटल तक लेकिन है और 15-16 क्विंटल तक प्रति एकड़ हमने मिल जाए। 175 से 180 दिन में पाक के तैयार हो जाए है। अगली किस्म है HHH 287 नरमा कपास की किस्म है अभी और 170 दिन में पक के तैयार हो जाए है। इसका बीज किसान अपने खेत में आसानी से तैयार कर सके है। इसकी पंखुड़ियां परागकण करीम रंग के हो हैं और संकर किस्म की औसत पैदावार की बात करें तो 9 क्विंटल तक लेकिन है और 13-14 क्विंटल तक प्रति एकड़ इसकी पैदावार हम ले सके हैं। यह किस्म पत्ता मरोड़ रोकते हैं कम ग्रसित हुआ है। तो वे कुछ उन्नत किस्में थी देशी कपास की भी और संकर किस्म नरमा की भी। जो भी किसान भाई भाई अपना कपास की बिजाई करने की सोच रहे हैं तो उन्नत किस्मा का चुनाव करें ताकि उन आगे चाल का इससे भरपूर फायदा हुआ है। तो ये कुछ मोटी मोटी बात थी। अगर किसान भाई इस टाइम पर किस्मा का ध्यान दे लेंगे तो अपनी कपास की फसल से भरपूर फायदा ले पाऊंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।
2: संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिण च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र व्यवस्था अस्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालक दलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति। अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिकासमर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य

0: भारतस्य राष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलम् गुजरात टाइटन्स दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कृति भारती पत्रिका और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इन दोनों कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा संसार। आज के विषय रहेंगे राष्ट्रमंडल ग्लोबल सड़क सुरक्षा सप्ताह, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और महाराणा प्रताप जयंती। साथ ही आप सुनेंगे रोजगार समाचार विशेषांक। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:45 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 8:25 पर। और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान, विषय रहेगा बागों में सिंचाई व्यवस्था। शाम 6:20 पर कार्यक्रम होगा कृषि जगत, विषय रहेगा पशुओं की उचित देखभाल। साथ ही आप सुनेंगे बातचीत फसलों का आग से बचाव, जानकारी देंगे दीपांशु। शाम 7:00 हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, विषय रहेगा प्रधानमंत्री जलधन योजना और साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं अनूप जलोटा।

कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है। एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे अनूप जलूटा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक जागरूकता अभियान होता है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। साथियों, इसका वैश्विक प्रभाव होता है और ये प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले खतरों, उनके पारिस्थितिक महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी साधन होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभियान मई में मनाया जा रहा है और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवासी पक्षियों के लिए मनाया जाता है। और साथियों, अब सुनते हैं ये नगमा।

0: बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: साथियों, पक्षियों का प्रवास एक प्राकृतिक चमत्कार होता है। प्रवासी पक्षी भोजन, प्रजनन और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सर्वोत्तम पारिस्थितिक परिस्थितियों और आवासों की तलाश में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। जब प्रजनन स्थलों पर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो वे बेहतर परिस्थिति वाले क्षेत्रों की ओर उड़ान भरते हैं। प्रवास के अनेक तरीके होते हैं। अधिकांश पक्षी उत्तरी प्रजनन क्षेत्रों में दक्षिणी शीतकालीन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। हालांकि कुछ पक्षी अफ्रीका के दक्षिणी भागों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में तटीय क्षेत्रों की हल्की जलवायु का आनंद लेने के लिए उत्तरी शीतकालीन क्षेत्रों की ओर या क्षैतिज रूप से प्रवास करते हैं। अन्य पक्षी सर्दियों के महीनों में निचले इलाकों में रहते हैं और गर्मियों के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी अलग अलग तरीके से प्रवास करते हैं। प्रवासी पक्षियों की शारीरिक संरचना और शारीरिक बनावट उन्हें तेज गति से लंबी दूरी तक उड़ने के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है। अक्सर उनकी यात्रा बेहद थकाऊ होती है, जिसके दौरान वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। लाल चिड़िया का प्रवास मार्ग किसी भी अन्य पक्षी की तुलना में सबसे लंबा होता है, जो साल में दो बार 16,000 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। ये साइबेरिया में प्रजनन करती है और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर शीतकाल बिताती है। कुछ तो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक भी चली जाती हैं।

साथियों, आज महाराणा प्रताप जयंती भी है। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म आज ही के दिन 1540 को कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जीवन कंवर के घर हुआ था। उनकी वीरता और बलिदान के लिए हर साल उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। जब वीर मेवाड़ी राजा महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं के विरुद्ध खड़े होते थे, तब बड़े से बड़े योद्धा भी उनकी एक झलक मात्र से भयभीत हो जाते थे। महाराणा प्रताप 7 फुट और 5 इंच लंबे बताए जाते हैं और उनके पास 80 किलो का भाला और 2 तलवारें थी, जिनका वजन सामूहिक रूप से 208 किलोग्राम था। वो जो सुरक्षा कवच पहनते थे, उसका वजन कम से कम 72 किलोग्राम था। वो राजपूत राजाओं के वंश से थे। राणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा जैसे राजस्थानी राजा अपनी वीरता और गौरव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अंतिम सांस तक मेवाड़ के समर्थन में लड़ाई लड़ी और अपनी भूमि के गौरव को हमेशा बढ़ाए रखा।

साथियों, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ वंश के 12वें शासक और उदयपुर के संस्थापक थे। राजा प्रताप परिवार में सबसे बड़े थे और उनके 3 भाई और 2 बहनें भी थीं। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उन्हें बचपन में कीका के नाम से भी बुलाया जाता था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के अलावा देवर की लड़ाई के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1577, 1578 और 1569 में मुगल बादशाह अकबर को 3 बार हराया था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां और 17 बच्चे थे। उनके सबसे बड़े पुत्र महाराणा अमर सिंह थे, जो उनके उत्तराधिकारी बने और मेवाड़ वंश के 14वें राजा बने थे। हल्दीघाटी युद्ध के 2 साल बाद जब महाराणा प्रताप जंगल में शिकार कर रहे थे, वो उस समय घायल हो गए थे और 19 जनवरी 1597 में 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। इतिहासकारों के अनुसार हल्दीघाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के पास 80 किलो वजन से ज़्यादा का भाला और 72 किलो वजन का कवच था। उनके भाले, कवच, ढाल और 2 तलवारों का वजन भी लगभग 200 किलो से ज़्यादा था। महाराणा प्रताप शौर्य वीरता के लिए

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के

0: नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। पांच दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में

0: Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarter-finals for the first time. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे आज के गायक कलाकार हैं श्यामलाल सांगी।
2: अब राजा भीमसेन अपनी बेटी दमयंती का सोमवार जाता है और राजे महाराजों द्वारा संदेश भेजता है और एक संदेश राजा नल के पास ही पहुंच जाता है और राजा नल अपने मन में खुश होकर

जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: अपने घर।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: श्रोताओं, लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार श्यामलाल सांगी को।
6: अब राजा नल तीतरों पे अपनी धोती भगा देते हैं और धोती लेके तीतर उड़ जाते हैं और दमयंती के दोहरा हुआ है के कहने लग गया। सुनिए, ए रे तीतर

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र। लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार श्यामलाल सांगी को।

पलंग नवारी गदरे तकिए ठाठ तमाम बनेगा जिस दिन तमी छोरी मेरा अज बहु नाम बनेगा मन कह जठानी बनू दुरानी अज

मेरे किसे वरतार का दुख इस वीर तै सुनो सच्ची कविता ही चाहिए तो जमुआ मीर तै सुनो जमुआ मीर तै सुनो कादन पचन तेरे छंदा के बंद खुला ना कर दे

इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे श्यामलाल सांगी। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सप्रस।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बादल फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को आवाजें दी है अनुराधा पोडवाल और सुखविंदर सिंह ने। समीर की शब्द रचना है, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कविता कृष्णमूर्ति मनहार और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म से गीत है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सौदागर फिल्म से अभी आपने गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जुड़वां फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। देव कोहली की शब्द रचना है और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाए आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में खलनायक फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

केके की आवाज़ में गैंगस्टर फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को आवाज़ें दी हैं सईद कादरी ने और प्रीतम के बोल हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: साथ में मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी।
1: पसंद अपने अपने कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भजन भयो अनिल भाई के राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हरियाणवी रागनी और भाई बैर तबील राग के साथ में गायक कलाकार आस्था वर्मा। फरमाइश भेजी भाई आप सब ने चौधरी बाद से राजू अग्रवाल, केशव अलख, चरणदास रेखा और भाई आप हैं गांव द्वारका से शमशेर सिंह पूरा परिवार, गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, गांव चौटाला से भाई दारा पंडित, संजय शर्मा, दीवानशु जोशी, बुलबुल और गांव जिंजर कला से मासी सतवीर शर्मा, कौशल्या बाला, पूरा हरित परिवार, कस्बा जुलाना से आप हैं पंडित महावीर शास्त्री और इसी रागनी की फरमाइश में मसीता डबुवाड़ी से दर्शन लोट, सूरज मल, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लोट और गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल, कमलेश गिल, टीनू प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल, डॉक्टर वाणिका गिल और रावण करनाल से वही ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, इसी रागनी की फरमाइश डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश शिवानीवाल, सौरभ शिवानीवाल, रमेश वर्मा। तो आप सब की फरमाइश पे बैर तबील राग गायक कलाकार आस्था वर्मा।

अगली रागनी रहेगी भी गायक कलाकार अपना रहेंगे भी आज़ाद सिंह कांडा खेड़ी और उनके साथी फरमाइश भेज जी आप सब ने। आप हैं आदर्श गांव कलंगा जिला भिवानी से मार्च सुंदरपाल कौशिक, संतरा देवी, अभिनव कौशिक, निशांत, साथ में भाई दिव्यांग दृष्टि, तोसानी और हिमानी। इसी रागनी की फरमाइश भेजी है लोको कॉलोनी लुहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र।

सचिन डालिया, योगेंद्र नरेंद्र और लक्ष्मी देवी। आप हैं मटोर कैथल से रामदिया नीलम बोत अजयटाक विजयटाक तमन्ना और बड़ौदा से भी उधम मौर। गांव लुवारी जाटू जिला भिवानी से आप हैं रामफुल शर्मा, हरिराम शर्मा, हरि किशन शर्मा, साधुराम, मदन सिंह नोरंग, हरिराम प्रजापत और सेरा और रामदारी शर्मा। तो वही आपकी पसंद पे रागनी गायक कलाकार हैं आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी और उनके साथी।

0: अगली रागनी गायक कलाकार भी दीपक त्यागी और उनके साथी फरमाइश साहब सब की आप हैं आदर्श गांव बड़ियाली हरियाणा से दर्शन लाल बंसल सुदेश रानी प्रवीण कुमार ममता गर्भिस पंचल गांव लुदेसर से पप्पू रामगाट संतोष देवी लक्ष्मी देवी प्रियंका साक्षी रुचिका गांव बागोत से आप हैं प्रकाश अम्बावता और वहीं से रागनी की फरमाइश भेजी है लाल मस्जिद भिवानी से स्वयं दृश्य समर प्रवीण अमित पोपली ज्योति तुलसी देवी ने और आप हैं जिला जींद गांव दौरड से श्री राम चहल कमल फौजी हरिचंद बैरागी दया किशन और पंडित हवा सिंह जिले सिंह जांगड़ा रामपाल रामहेर और पूरा मेरे परिवार गांव सांगवान हरियाणा से शमशेर गुजर पालाराम गुजर सुमन रानी पवन और भाई बलजीत सरपंच पूरा परिवार तो आप सब की फरमाइश पे गायक कलाकार दीपक त्यागी और उनके साथ
1: रागनी उस मौके की जब चंद्रगुप्त धर्म मालकी को टापू में सोती को छोड़ कर चला गया तो सोती उठ कर अपने पति को याद करती और क्या कहती एक बात के द्वारा क्या बता दिया भला

0: लक्ष्मी चंद के हैं एक जगह पे लक्ष्मी चंद के हैं एक जगह और हो से पत्थर बाहरी
1: और भी पसंद अपने अपने कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति गायक कलाकार हैं मास्टर रामपाल शर्मा और उनके साथी फिल्माई साहब सब के आप हैं गांव चुलाना से रामचंद्र रोहज रामपाल सुरजा हेमचंद्र रोहज और पूरा परिवार गांव लाट जिला सोनीपत से केशव नमन अभी अनवी कपूर सिंह कौशिक और इसी रागनी की फरमाइश भेजिए दुर्गा कलोनी आंसू से आंसी से राजू मिगलानी बबीता मनु सुभाष एकता कलोनी रोहतक सीताराम कागड़ा बबीता बोत निखिल अंकित साहिल आप सब की फरमाइश गायक कलाकार मास्टर रामपाल शर्मा उनके साथ।

0: तो अभी ये थी आखिरी प्रस्तुति गायक कलाकार राम प्रसर मौर्य उनके साथ थी। और वैसे के साथ आज का पसंद अपने अपने कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल भाई दो इजाजत सारे बण भैया ने राम राम।
1: आपने सुना पसंद अपने अपने कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का समय है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का यही रोहतक केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्मी गाने।

ये था मोहम्मद रफ़ी का गाया आरजू फिल्म का गीत। लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। नाइट इन लंदन, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत इसी आवाज़ में सूरज फिल्म से आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है शंकर जयकिशन का।

ये गीत आपने सूरज फिल्म से सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत ये है,

मुंगेश का गाया संगम फिल्म का ये गीत था, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है शागिर्द फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

शागिर्द फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत माई लव इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, मुकेश की आवाज़ है, संगीत है दान सिंह का।

ये था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इससे पहले मुकेश की आवाज़ में माई लव फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था

बिन बादल बरसात फिल्म का यह गीत था। स्वर और संगीत हेमंत कुमार के थे। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आशा भोसले की आवाज़ अब हम सुनेंगे नाटक फिल्म में। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये था आशा भोसले का गाया नाटक फिल्म का गीत। नाटक फिल्म के इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा, संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये था मुकेश का गाया। चेतना फिल्म का नाम था, सपन जगमोहन का संगीत और गीत था नक्श लैलपुरी का। ये था आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आपके सुझावों का, विचारों का, मार्गदर्शन का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में स्वागत है। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 01262-255-446, 255-447 और 255-448। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 31 मई को शाम 7:30 बजे। ये थी जानकारी आपके लिए। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार होंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Delhi last night. Chasing the victory target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shobhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने. उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी. टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की. और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. अब समाचार विस्तार से. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है. भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. एक रिपोर्ट.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया.
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब. भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब.
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली. आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया. प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए. मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे. इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया. प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है. प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक

0: मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
3: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप खित खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाई अनु भाई अनिल भाई के राम राम। और मौसम की बात करी जाए तो भी मौसम चौपाल तबार तो हो गई ठीक ठाक सा, और धूप निकल रही अच्छी, तापमान में वृद्धि भी रहेगी, लेकिन भाई का जो पश्चिमी विक्षोभ है ये पांडा नहीं छोड़ने लाग रही। जम्मा हनुमान की चालू बम्बई बना रखी है, और एक और पश्चिमी जो विक्षोभ है वो भी 10 के बाद सक्रिय है। हालांकि पाड़ा की तरफ ज़्यादा इसकी सक्रियता रहेगी और प्रभाव इसका ज़्यादा रहेगा, और इसका जो आंशिक प्रभाव है अपना भाई हरियाणा प्रदेश में भी 11 तक देखने में मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सक्रिय नहीं है भाई। उसका है छिटपुट बूंदाबांदी भी हो जाए और भाई कितने हल्की फुल्की बारिश भी आ जाए, लेकिन आंधी के आसार इसमें ज़्यादा रहेंगे। पीछे भी जो अंधोड़ा आया था, तूफान आया था, उसमें बहुत सारा हमारा भाई नुकसान हुआ है। विशेषकर गामा में बिजली की सौर ऊर्जा की प्लेट हैं छाता पर हुए हैं, और जो टिन बाइयन लगा रखी थी टूटी तपक अतर खेता में हुए बहुत उड़ गई, पेड़ बहुत सारे टूटे। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है भाई, एक तो पुराना है हमारा जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण अंचल है, उसमें हम क्या रहा भाई, सवेरा अपना तार दूर काट के नार फूस का करके और भाई पशुआन नुआ दुआ के हम गोर भी हमें पेड़ के नीचे बांधते हैं। हालांकि एक तो भाई मैट माट लाके कूलर भी भाई लाने लगे, लेकिन फिर भी हम देखा गोरव्या में पेड़ के बगीचिया में जोड़ के आसपास में बांधे हैं, और बड़ी अच्छी गहरी छाया हो तो बड़ा पशु भाई बैठे भी अपना रज के। लेकिन समस्या क्या है कि भाई देखो जो हमारे पुराने दरखत हैं, ज़मीन नाम के चावा आ गया कि तेरे कलर की चास होगी, जड़ हमारी पुरानी होगी, हम संभाल नहीं करते ना उनका को माटी लांदे ना कुछ और। पहले तो बुजुर्ग ध्यान रखा करते भाई अपना को छंगाई का, उनका को जड़ जड़ दिखण लग जाती, माटी खूब लाया करते, लेकिन कोई अपना ध्यान नहीं, बस सिर्फ अपना खुद का व्यक्तिगत ध्यान, बाकी कुछ नहीं। तो इस अवस्था में अगर हम पेड़ के भाई पशुआन बांधते हैं तो उसमें, या फिर कई भाई तो ऐसा कर रहे हैं अपना जो बिजली खंभे हैं ना उनका भी आंट लाते हैं, तो इसी जगह पर तो बिल्कुल कोई बिजली का खंभा है। कई भाई देखे कि कल्टीवेटर रोके भी पशु को छोटा काटड़ू बाछड़ू है भैंस है बैल है बांध रखे हैं, बिल्कुल भी ऐसा काम भाई ना करें, इसमें जान माल का दोनों का खतरा है, नुकसान का की आशंका ज़्यादा है इसमें। ना बिजली के पोल के बंद हैं ना उसका आसपास बंद है भाई, अगर समाज से भी आऊँगे बारिश भी आऊँगी को तार टूट जाए खम्भे में करंट आ जाए तो। और पेड़ की बात करा तो पेड़ पर देखो एक तो ये है कि गहरी छाया जड़ है उड़ तो भाई सारा दिन अपना छाया रहे है, लेकिन कितने पेड़ के नीचे कुछ छिद्दा छड़ा पेड़ है उसका हम बांध दें तो भाई अपने जिस तरह धरती माता घूमे है दिशा हो जाए सूर्य नारायण महाराज की उसका जो अर्थ चाल है, तो उसमें फिर कितने छाया कितने धूप हो जाए तो पशु आफण लग जाए, और भाई आंधी तूफान आ जाए तो पेड़ का पड़ने का डाला टूटने का खतरा भी रहे है। तो अपना घर ना भाई सुरक्षित जगह पर बांध है, जड़े भी टिन टैना के भाई जुगाड़ हैं तो उसमें थोड़ा सा घना लोभ नहीं करना चाहिए हमने, थोड़ी सी टिन अच्छी हो नीचे पाइप वाइप ला के बढ़िया उनका बंद लगा दें, और फिर भाई ऊपर पाड़े पूड़े धर के मजबूत टिन हो, नहीं तो इसमें दोनों उतरेगा मरका। कई भाई ऐसा भी करते हैं, कई पीछे कुछ साल की बात है बौंद गांव की घटना भिवानी जिले में, भयन छप्पर सा बना रखा था उस पर पराल की पुली धर रखी थी, और भाई उसमें आगजनी घटना होगी कि कुरडी में कोई भाई अपना कोई बुबर बाबर आ गई उसमें, और वह वैसे लगती से लगती दोपहरी में और वह अपना सारे डारम फैल गई, तो उसमें कई जो है अपना भैंस थी 4-5 उसकी सारी जल के भाई ख़त्म होगी, बड़ा जान का भी नुकसान माल का भी और भाई स्ताप भी देखा नहीं जैसे हालात हो जाए। तो ये सावधानी है बेसिक, ये हमने बहुत ज़रूरी है रखनी, और भाई अपने मौसम का ध्यान करके जो बुआरा बारा बुआरा भाइयों का रह है बाड़ी बूढ़ी का मौसम का ध्यान रख के करें, आगे चल के उसके ब्राह्मण रूमड़ हो जाए तो थोड़ा सा भाई अपना जेलवा जलवा फेरने का जो काम है वो ध्यान में करें, और जितना भी जल्दी हो उसका आगे चल के भाई कपास की बिजाई का है भाई पचेत में जानती जागी, और पचेती अवस्था में हर साल हम देखा हाँ कि सफ़ेद माखी का मरोड़िए का आक्रमण ज़्यादा हुआ है। हालांकि जो रेतीले ये हमारे खेत है भगत तक खाली होगी तो भजन बिजाई कर रखी है खूब, कितने कितने दो भी दो दो आंगड़ की भी हम कह सकें दो बिलांत की बल्कि, और ये भाई नुड़ान गुड़ान भी लग रहे हैं। और बाकी भाई देखो जो हमारा खरीफ का मौसम चल रहा है उसमें गन्ना फसल की हम बात करा तो भाई उसमें कीट नियंत्रण का किस तरह से हमने ध्यान रखना है इस बारे में भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई भजन रागनी सुनवाएंगे जिसके गायक कलाकार हैं बिजेंद्र नरवाल और उनके साथी।

तो फिर आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे विजेंद्र नरवाल और उनके साथी प्योर भाई देसी रंग था, और इनकी गायी हुई रागनी एक और भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर मेरी जुम्हारी गन्ना फसल है जो मोडी हमने लगा ले रखी है या फिर नौला

है दोनों में भाई, जो कीट नियंत्रण है उसके बारे में भाई देखो, फिर पुरानी हम बात करें और चने फसल में, चने में अपने टाट में सूंडी खूब आ कर दी, कपास में भी भाई बिंदोलियाँ कीड़ा आ कर दा, हालांकि जो वाइट फ्लाई था, मरोड़िया था, रस चूसने वाले कीट ये इतने नहीं थे, खाली अपने भाई जो सूंडी वह कर दी, गुलाबी सूंडी, हरी सूंडी, कूड़ा कीड़ा जो कूद के चाल कर दाली कटा लान दिए, इस तरह के जो कीड़े थे बहुत ज़्यादा थे। और उसका कारण क्या था, हरेक शीशम के पेड़ पे, जांडी के पेड़ पे, कितने भी हम देख दे तो गादर की सूंडी पाया कर दी भाई। नाम उसका गादर की सूंडी थी, नूनी था भी गादर की सूंडी को भाई तोड़ ताड़ के ला रखी थी, उसमें जोड़े कीड़े के अंडे रहा कर दे, हाथ जोड़े कीड़ा के अंडे के करा कर दे, उसमें बच्चे बन जाते। और जो ईसा एक जीव हमने देखा खेता हम, खूब आपका भी ध्यान होगा कि ऊपरा ने आठ ठा लिया करता, हाथ के ऊपर के जो उसके पंजे से थे वो ठा लिया करता, और उसने हाथ जोड़ा बोलिया करते, ईसा हो जाता बनू तो हाथ जोड़े है, जिस तरह अपना राम के घोड़े हो ना आकटप रिन पे हम बोलिया करते, हालांकि ये भाई अपने मित्र कीटा मत को नहीं आंदे फसल न खाओ हैं, तो जो राम का घोड़ा है इस टाइप से का पतला हरिया सा उन्होंने जोड़ा बोलिया करते। और देखो जब बिरसम भाई अपना लास्ट स्टेज पर आओ, तम देखा हाँ चारों वाली फसलें की बात करें तो उसमें बिटल बिट्टू बोलिया करते अपने देसी भाषा में, खूब उसके सुतरे सुतरे चितंगे से, और बड़ा एक सुंदर लागया करता, उड़ता भी अच्छा लागया करता, ना लड़या करता वो बहुत होया करते। वो के करदा, उसका काम ये होता भाई अरे तेल के जो अंडे हैं बच्चे हैं उन खाना, सफ़ेद मक्खी के जो अरे कोई बच्चे हैं अंडे हैं उन खाना, या कोई भी और छोटा मोटा कीट पतंगा है उन खाना। और ये किसा संतुलन था भाई, जैसा खेता में हम देखा भाई जो सांप है वो चूहा न खा है, हालांकि जो दामन सांप है जिसने हम रघुवंशी सांप भी कहते हैं, खूब डेढ़ डेढ़ दो दो लाठी के भी हाइट हो जाए उनकी, हमारे भी दें किसान भाई कई, लेकिन वो हमारे मित्र कीट हों, जहरीले भी नहीं होते। और बाकी तो भाई देखो जीव जंतु है, जीव जीव का पिता जगत में, जीव जीव की माता है, जीव जीव का प्यार जगत में, जीव जीव का नाता है, और जीव जीव की रक्षा करता भाई जीव जीव को खाता है, ये एक प्रतीक अपना प्रकृति का संतुलन है वो सारा भाई। अपना जो जो भी कीट हैं वो दूसरे कीट ने खाएंगे, जो मांसाहारी कीड़े हैं वो अपने मित्र हो गए, जो फसल ने भाई बर्बाद करेंगे वो अपने शत्रु कीड़े हो गए। तो हम मोटे तौर पर ये संतुलन ऐसा था कि घना सा रेगोर रागोर अपने देसी तो नहीं कह सकते, रेगोर की दुआई जो पहले सिल्वर की मुसमा आया करती, शिष्या ने पहले ज्ञान नहीं हुआ करता धो के भाई अपना बोले मिश्री लेंगे, बहुत खतरनाक था वैसे तो ये भाई जहरीली चीज़ अपना घर ना रखना, ज्ञान बिना ये सब समस्या हो जाती। लेकिन फिर भी क्या था कि अपना ना कोई भाई छिड़काव के अंतर थे, खूब बुई अपना पैड़ी, हालांकि आज के जो हमारे युवा किसान हैं भाई हैं उन्हें पता ही नहीं बुई के चीज़ जो है, बुई पाड़ लेंदे रड़का रड़का तोड़ के अंदर उनने का मतलब हम वो बना लेते एक फुहारा कह लो, उन्हें बह के ना हर छिड़किया करते, भिंडी तोड़ दे तो अपना भाई कुर्ता काटता ऊपर के न्यारा पैर लेंदे, आता कातर बांध लेंदे, भिंडिया में भी स्प्रे होया करती। तो कुछ तमा जामा ऐसा था कि सारा संतुलन हमारा ठीक ठाक था, घने कीड़े और घनी बीमारी नहीं थी। इतनी घासा की प्रजाति आ गई भाई, अपने बाढ़ के आसपास आया घास जिसका नाम गाजर घास धर दिया, खूब देखा तो पहाड़ा में भी चीनी नीलकंठ के जो पहाड़ हैं, कदली बण है, सौर इसका फैला हो रहा है, भांग इतनी फैल गई, और कुछ घास इसी आगे जिनके नाम नहीं पता, कोई ना कोई नाम धरेगा, फिर जिस तरह भी गाजर घास का नाम चलिया इस तरह उनके नाम भी चलेंगे। कुछ कीड़े इसे आगे कि उनका नामा का नहीं बेरा था भाई, पता लग गया किसी ने जो कुछ अपने संस्थाएं सी बना रखी हैं जो प्राकृतिक खेती करे हैं जींद साइड के, उन अपने नाम धरे उनके धीरे धीरे प्रचलन मान लाग रहे हैं। और जो भी अपना चीज़ थी वेस्टेज नहीं होया करती, को कातर कुड़ी पा जाती ऊन उठा लेंदे भाई गिंडी मंडनी है, को सूतली रहे को तागा रहे को ऊन का रहे, और तो और भाई बाधी टूट जाती तो नीचे सूड़ गाल के ना, और वो उस तरह काम चलाया करते, या फिर अपने चप्पल की बाधी निकल जाती तो भाई अपना कुछ सूतली सातली नाड़ तर उसने गालिया करते। बड़े एक सारा सिस्टम अलग थलग सा था और बड़ा संतुलन भरा जीवन था, कोई वेस्टेज नहीं होया करती। आज हम देखा हाँ कि भाई यूज़ एंड थ्रो का ज़माना आ गया, खाओ फेंक दो, बहुत बीमारी उससे बढ़े हैं, घनी जो अंधा धुंध एक दौड़ हमने अपनाई, हालांकि भाई नू सोचेंगे भाई गन्ना में कीड़े का विषय है और थोड़ा सा अलग विषय चल रहा है, लेकिन ना उसी से मिलता जुलता है ये भाई, जो एक और दौड़ मार लग गई, अरे हमने रात भरी जिंदगी जो पकड़ ली कि भी काम नहीं करना, सब मशीन आते हैं, एक किलो की खांड है, दाना है, छिड़काव करना है, स्प्रे करनी है तो भी अपने टंकी मारेंगे देखें।
भाई ये चीज़ें रासायनिक जो खाद आई थी एक पोषक तत्व की कमी ने पूरा करने खातर आई थी ना कि नू भाई पीछे कुछ दवाइयाँ ऐसी आई थी खांसी की दवाई वो भाई थोड़ा सा उसमें गैल होया करता खांसी के लिए बढ़िया दवाई थी लेकिन भाइयों ने क्या कराया बस ले सीसी औस दी उन पर बैन करनी पड़ी। तो ये चीज़ें हमने गलत कर ली। रासायनिक छिड़काव ज़्यादा यूरिया का छिड़काव करने तो सीधी सी बात है कपास में करेंगे सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई मरोड़िया रोग इसमें आओगा बहुत हरा तेला इसमें बढ़ेगा घास अड़ंग बड़ंग इसमें बढ़ेगा कपास हमारी बढ़ न पड़ जाएगी फूल टिंडे अगर लागे को नहीं हालांकि डालो लेकिन जो सिफारशुदा मात्रा मिट्टी के जांच के आधार पर डालना तो और भी अच्छी बात है। इसी तरह गन्ने की बात हम करा कि भाई गन्ने में भी दे पर मार खांड में भी अपना कट्टा भैया ने बंद छोड़ दिया बड़े धीरे धीरे पिंगल के उसमें चला जाएगा बड़वार ज़्यादा कर दी लेकिन यह है कि उसमें कीड़े और बीमारी इतनी फैल गई हमारा समझ में नहीं आई भाई छिड़काव करने के बाद में बोले दवाइयाँ खराब है वाह खराब है ना सुनो को बीज उपचार का हम सोचते ना को ये देखते कि भाई बीज किस पतले हैं इसमें कोई कीड़ा बीमारी को रोग तो नहीं था। ये सावधानी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी ये है कि देखो गन्ना जो हमारी फसल है इसमें बहुत सारे कीड़े नुकसान करे हैं और इन कीड़ा का मोटे तौर पर अगर हम भाई जिक्र करें तो इसके लिए देखो भाई मोटी फसल में कंसुआ है इसका प्रकोप हो तो 2.5 लीटर बलो अपना जानी मानी दवाई क्लोरोपाइरीफास लगाके थोड़ी सी आकड़ है ध्यान रखना पड़ेगा छिड़काव में 20% ताकत की फसल में सिंचाई के साथ भी दे सके हैं। काली कीड़ी पायरला है इसका आक्रमण हो जाए तो वह 400 मिलीलीटर दवाई वायर क्लोरोपाइरीफास लेकिन इसकी थोड़ी सी ये है कि मात्रा बढ़ जाएगी 400 लीटर पानी में गोड़ बना के और ये अपने दवाई छिड़काव हम इससे कर सकें 20% ताकत की है। और परजीवियाँ में देखो पायरला की जो रोकथाम है ज़्यादा जानकारी इसकी भाई ज्ञान खातर जानकारी खातर समीप का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है अनुसंधान केंद्र है जीटी रोड करनाल में या फिर गन्ना विभाग के अधिकारियां तो भाई मिल सके हैं। माइट अष्टपति की रोकथाम खातर 600 मिलीलीटर रेगोर जो दवाई है 30% ताकत की जानी मानी दवाई ये हम ले सके हैं। 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भाई हम छिड़काव कर सकें। कुछ क्षेत्र में भाई छोटी बेदक टॉप बोरर जिसने बोला काफ़ी नुकसान पहुँचाओ है इसके लिए भी मैं आगे चल के 13 किलोग्राम कार्बोफुरान 3G ये जो मैं अपने कीटनाशक है प्रति एकड़ के हिसाब से तुरंत डाल के सिंचाई कर दें और बाकी जितना भी हो सका है भी अपने नुलाई गुडाई इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। और एक रागनी भजन और सुनवा दें गायक कलाकार एक बार फिर विजेंद्र नरवाल और उनके साथी।

सना सच्चता और दिल के बीच घोटा लेंगे। आज ते पछे धर्म तजर का दोनों हलफ उठा लेंगे। देखे सेठ सेठारी तेरे पुतले वो गोड्डा भी।

ne kare he ulke bede par ge neem dharam pun daan tajye te डूब अदम मजे धार गए देखे गज और गरे लड़े जलमा ये गज हरी ना।

तो भी आपने रागनी सुनी, गए कलाकार थे विजेंद्र नरवाल और उनके साथ ही। बाकी भी चलते चलते ये है कि जो भी अपना गन्ना फसल है उसमें थोड़ा सा पानी पात का हम ध्यान रखें, नुलाई गुड़ाई का हम ध्यान रखें, और जो हमारी मोडी फसल है उसमें भी हम सही अच्छे तरीके से ध्यान रखें। मोडी में थोड़ा सा हम भाई जो उर्वरक हैं वो कम डाल रहे हैं, फास्फोरस है या फिर भाई नाइट्रोजन, तो भाई खूब छुट्टी का गे रहे हैं, फास्फोरस का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। और देखो भाई शुरुआती दौर से यदि हम ध्यान रखें, जब बीज लें स्वस्थ लें, मेलाथियन जो दवाई है उसे बीज अपना उपचारित करके बोएं, तो फिर आगे चल के इतने जो कीड़े हैं और जो बीमारी है वो नहीं आंधी, और हमारी फसल बढ़िया रही जा है, सुरक्षित रही जा है, और अच्छी पैदावार इसमें हमने मिल जाए। तो इस शुरुआती दौर से थोड़ा सा हम ध्यान रखें, बीज जड़ तो भी लें भाई, भरोसा कर लें, जो अपने किस्म भाइयों ले रखी है वो आगे भाई मेल में नोट कराऊं भाई हमारी यह किस्म है, उससे के आधार पर हमारा सारा काम चला है भाई। घड़ी का देखें, इससे एक साथ कार्यक्रम का समय समाप्त होया। चलेंगे सारे मन भाइयों ने, राम राम।

आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर DTH और न्यूज़ ओनी IR पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

अभी तक आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम, मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ओन AIR पर। ये आकाश

मीडियम वेव 262.66 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का इरोहता केंद्र है। शाम के 5:30 और

दैनिक कार्यक्रम युवा संसार में आप सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार। स्वाभिमान की वह ज्योति जो आज भी राष्ट्रभक्ति का मार्ग प्रकाशित करती है। भारत की वीरभूमि राजस्थान में कई ऐसे महान योद्धाओं को जन्म हुआ और उन्हीं में से एक नाम ऐसा है जो साहस, त्याग और स्वाभिमान का पर्याय बन चुका है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की जीवित मिसाल थे। आज उनकी जयंती है और वो हमें सिखाते थे कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने सिद्धांतों और सम्मान के लिए संघर्ष करना ही सच्चा जीवन है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के दुर्ग में हुआ था। बचपन से ही उनमें वीरता, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम के गुण दिखाई देते थे। वो मेवाड़ के एक ऐसे शासक बन चुके थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके। जब उनके कई ऐसे राजाओं ने अपने राज्य बचाने के लिए समझौते कर लिए, तब महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर भी अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार और प्रजा के साथ जो है वो जीवन व्यतीत किया और स्वाभिमान का कभी सौदा नहीं किया। साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता का सबसे उज्जवल उदाहरण है। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का संघर्ष नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और गुलामी के बीच की लड़ाई थी। और उनके प्रिय घोड़े जिसका नाम चेतक था, चेतक की निष्ठा और बलिदान आज भी हमारी आँखों को नम कर देता है। उनका जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि सच्चा वीर वही है जो कठिनाइयों से डट कर सामना करे। उन्होंने हमें सिखाया कि मातृभूमि का सम्मान किसी भी सुख सुविधा से बड़ा होता है। और आज के युवाओं के लिए उनका जीवन जो है वो एक प्रेरणा का स्रोत है। जब भी राष्ट्रभक्ति, साहस और स्वाभिमान की बात होती है तो महाराणा प्रताप का नाम हमेशा ही स्वर्ण अक्षरों में सामने आता है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही सही मायनों में उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और राष्ट्र के प्रति समर्पित बने तो हमारा देश और अधिक शक्तिशाली होगा और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी होगा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जीवन एक दीपक की तरह है जो हमें संघर्षों से भी अडिग रहने की प्रेरणा देता है। और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बॉस द अनफॉरगॉटन हीरो से। विजय प्रकाश की आवाज़ है, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं AR रहमान।

साथियों, अभी आपने सुना बॉस द अनफॉरगॉटन हीरो फिल्म से ये गीत। विजय प्रकाश की आवाज़ थी, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत दिया था एआर रहमान ने। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के एक और विशेष दिवस के बारे में, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षी मौसम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार एक देश से दूसरे देश की ओर हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। भारत में भी साइबेरियन क्रेन, फ्लैमिंगो जैसे कई प्रवासी पक्षी सर्दियों के दौरान आते हैं। ये पक्षी जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं और पर्यावरण की स्थिति का संकेत भी देते हैं। और आज का समय कुछ ऐसा है जहां हम देखते हैं बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और जलाशयों का नष्ट होना। ये सभी कारण हैं जिस वजह से जो प्रवासी पक्षी हैं उनका जो सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, एक देश से दूसरे देश में जाना, ये सब जो है वो खतरे में है। इन पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और इसलिए इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधों और जल स्रोतों की रक्षा करें और पक्षियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएं। प्रवासी पक्षी प्रकृति की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं और साथ ही साथ पर्यावरण में भी संतुलन बनाए रखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और अगर हम प्रकृति और पक्षियों की रक्षा करते हैं दोस्तों, तो तभी हम आने वाली पीढ़ियों को उनकी मधुर आवाज़ सुनवा सकेंगे और इस सुंदरता का आनंद आने वाली पीढ़ी तभी ले सकेगी जब हम इस पर्यावरण को बचाएंगे। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन का विशेष कार्यक्रम रहता है रोजगार समाचार का। तो इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले रोजगार समाचार के बारे में, जो कि है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। कुल 1865 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अप्रेंटिसशिप की ये पोस्ट है जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई है। और आयु सीमा की बात करें तो इसमें केवल 20 से 28 वर्ष तक के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन है और यहाँ पर अंतिम तिथि एक बार फिर आपको बताते हैं, 19 मई से पहले ही आपको आवेदन कर देना है और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। unionbankofindia.co.in विभाग की वेबसाइट है जिस पर आप जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अगला रोजगार समाचार है बिहार लोक सेवा आयोग से। कुल 1230 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी पद

पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक और कुछ अन्य निर्धारित योग्यताएं हैं जो कि अभ्यर्थियों से मांगी गई हैं। अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, bpsc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं 31 मई से पहले पहले। UPSSC लखनऊ में 243 पदों पर प्लाटून कमांडर और कुछ अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 6 जुलाई है और यहाँ पर भी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो अभ्यर्थी ने स्नातक जो है वो किया हुआ हो, यानी कि ग्रेजुएशन की अनिवार्यता जो है वो दर्शाई गई है, और साथ ही साथ पद अनुसार कुछ अन्य निर्धारित योग्यताएँ भी हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। तो अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, upssc.gov.in वेबसाइट है विभाग की, जिस पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अब आगे। अगला रोजगार समाचार एम्स ऋषिकेश से है, जहां पर कुल 119 पदों पर जो है वो आवेदन आपसे मांगे गए हैं। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद यहाँ पर रिक्त हैं, जिनके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 18 मई है, यानी कि 18 मई से पहले ही जो अभ्यर्थी हैं, इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। MD MSc शैक्षणिक योग्यता है जिस जो कि मांगी गई है, और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, aimsrishikesh.edu.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। अगला रोजगार समाचार रेल भूमि विकास प्राधिकरण से है, कुल 40 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साइट इंजीनियर्स के पद यहाँ पर रिक्त हैं, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 22 मई है। और वहीं बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो BE और BTEC जो है वो अभ्यर्थियों से मांगी गई है यहाँ पर, और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, indianrailways.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन की प्रक्रिया को अंतिम तिथि से पहले, जो कि 22 मई है, आप पूरा कर दीजिए। और अगला रोजगार समाचार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो से है, यहाँ पर क्वालिटी मैनेजर्स के पद रिक्त हैं, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी है वेबसाइट पर sale.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गुरु से। AR रहमान और साथियों की आवाज़ है, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं।

दोस्तों, अभी आपने सुना गुरु फिल्म से ये गीत एआर रहमान और साथियों की आवाज़ थी। गीतकार थे गुलजार और संगीत भी दिया था एआर रहमान ने। आइए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे रोज़गार समाचार पर, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला रोज़गार समाचार जो है वो आपके लिए है कोल इंडिया लिमिटेड से, जहाँ पर 660 पदों पर आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 11 जून। और वहीं बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पर बीई और बीटेक जो है वो अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। और अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, coalindia.in विभाग की वेबसाइट है। वेबसाइट आपके लिए एक बार फिर दोहराते हैं, coalindia.in, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला रोज़गार समाचार है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से। अस्पताल सहायक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 1200 है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई है। और अधिक जानकारी के लिए और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जा सकते हैं, esb.mp.gov.in, esb.mp.gov.in विभाग की वेबसाइट है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई है, जिससे पहले ही अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर दें। आगे बढ़ते हैं और अगला रोज़गार समाचार वन अनुसंधान से है। देहरादून में 51 पदों के लिए तकनीकी सहायक और वन रक्षक और कुछ अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 3 जून है। और शैक्षणिक योग्यता की बात

करते हैं तो अभ्यर्थी के पास 10वीं, 12वीं और साथ ही साथ कुछ अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए जो कि पद अनुसार अलग अलग हैं। अधिक जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, fri.icfre.gov.in विभाग की वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन पूरा कर दें। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 60 पदों के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। पदों की बात करते हैं तो ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए ये पद रिक्त हैं और जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 20 मई। और आयु सीमा की बात करते हैं तो इन पदों के लिए सिर्फ 21 और से 30 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है और जो अभ्यर्थी हैं उनका जो चयन किया जाएगा वो एक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ibps.reg.ibps.in विभाग की वेबसाइट है। 20 मई से पहले ही जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में कुल 10 पदों के लिए डेप्यूटी मैनेजर के पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीई और बीटेक या फिर बीएससी अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई है और 20 मई यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि है। engineersindia.com विभाग की वेबसाइट है, जिस पर जाकर इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में इंजीनियर्स के पद रिक्त हैं और अंतिम तिथि 1 जून है। iitm.ac.in विभाग की वेबसाइट है और 1 जून से पहले इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर दें। बढ़ते हैं आगे और ये रोजगार समाचार का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन सुन लेते हैं अब कार्यक्रम का अगला गीत। डेली सिक्स फिल्म से गीत है, मोहित चौहान की आवाज है, गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत दिया है।

अभी आपने सुना दिल्ली सिक्स फिल्म से ये गीत मोहित चौहान की आवाज़ थी। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत दिया था AR रहमान ने। और रोज़गार समाचार के सिलसिले को यूं ही जारी रखते हैं और अगला रोज़गार समाचार है आपके लिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अनुदेशक के पद रिक्त हैं। कुल 726 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 15 मई है और 18 से 37 वर्ष तक के इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। bihar.gov.in विभाग की वेबसाइट है जिस पर आप जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। और अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के एक और विशेष दिवस या हम यूँ कह सकते हैं सप्ताह के बारे में, राष्ट्रमंडल ग्लोबल सड़क सुरक्षा सप्ताह। दोस्तों, सावधानी ही सुरक्षा है, तो हमें सड़क में जो नियम होते हैं, यातायात के जो नियम होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। और सड़क सुरक्षा ज़रूरी है क्योंकि यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जो दुर्घटना होती है उसमें हमारा तो नुकसान होता ही है, साथ में जो अन्य लोग होते हैं सड़क पर, दुर्घटनाओं में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए यातायात के नियमों का पालन करें और सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखें, ट्रैफिक सिग्नल्स का भी ध्यान दें और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें और वाहन हमेशा निर्धारित जो सीमा रखी गई है उसी पर ही चलाएं। अब उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम आज का पसंद आया होगा। दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी महिमा को। नमस्कार।

0: आपने सुना युवा संसार कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल,

0: अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ. APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे संस्कृति भारती पत्रिका। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। इसमें श्री दीपांशु महलावत के साथ बातचीत का विषय रहेगा फसलों का आग से बचाव। ग्रामीण संसार में आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00।

एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे नाटक फिल्म के गीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:25 पर कलाकार होंगे तलत अजीज। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। यह है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और अब आपको बता देते हैं कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 9:30 बजे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से रिले करेंगे। अलावा इसके शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी आप सुनेंगे रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से। कृष्ण जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर विकास कुमार के साथ बातचीत की जाएगी। विषय रहेगा गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में नाटक का प्रसारण आप सुनेंगे शाम 7 बजे।

घरांगन कार्यक्रम में कल दिन में 12:30 बजे दीक्षा काजल के साथ बातचीत का विषय रहेगा संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार, परंपरा या स्वतंत्रता। बालकुंज कार्यक्रम में प्रातः 8:30 बजे बाल श्रोता सुनेंगे CIT द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम चाणक्य। सुबह सवेरे कार्यक्रम होगा प्रातः 7:25 पर।

एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर, सुगम संगीत कार्यक्रम होगा रात 8:25 पर। अलावा इसके 1:10 पर आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आप सुनेंगे ईमेल आधारित।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे और दिन में आपको बताया ही है आपके अनुरोध पर कार्यक्रम होगा ईमेल पर आधारित, और शाम 7:30 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। फिर से आपको बता दें सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 7:35 पर। ये एक शुद्धि हमने की है अपने उद्घोषणा में, और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से संपन्न होता है। 6:10 होने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

स्थित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान

0: मतदान कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम एवं अन्य सामग्री प्रदान की गई। हरियाणा निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने कहा, सभी मतदाताओं को वोटर पर्ची वितरित की गई। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा ने जींद की अधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज लाइन बिछाने और गलियों के निर्माण का काम प्राथमिकता के आधार पर करने का आश्वासन दिया। और भिवानी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर कई मामले आपसी सहमति से निपटाए गए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी व बंगाल की जनता को बधाई दी।
1: ऐतिहासिक दिन है, ये बंगाल की पवित्र भूमि, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, ये भूमि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। देखिए, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प की जीत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास, राष्ट्रहित और सुशासन के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। नए नेतृत्व के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऐतिहासिक धरा पश्चिम बंगाल देश को नई दिशा देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम वितरित की गई। पंचकुला में सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में महापौर व सदस्य के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और अन्य सामग्री वितरित की गई। पंचकुला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि मतदान के लिए 20 वार्डों में कुल 204 बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर 2 ईवीएम मशीनें लगाई जाएंगी, जिनमें से एक महापौर के चुनाव के लिए और दूसरी नगर निगम सदस्य के चुनाव के लिए होगी। श्री शर्मा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए वार्ड वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आज जो भी कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ FIR भी की जाएगी। पंचकुला पुलिस की उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
2: तो कल के इलेक्शन है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई है। हमारी 85 लोकेशंस और करीब 205 वोटिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें हमारी कुल मिला के 700 लोग हैं। और जो संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ हैं, उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी वेपन्स के साथ ड्यूटीज रहेंगी। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी आसपास 200 मीटर की परिधि पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का टेंट ना लगे, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है।
0: उन्होंने उम्मीदवारों से आह्वान किया कि वे आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करें तथा चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। कल होने वाले नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत आज अम्बाला के OPS विद्या मंदिर स्कूल में पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधी सामग्री प्रदान की गई। रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त विराट ने बताया कि आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों के साथ साथ चुनाव संबंधी अन्य सभी सामग्री दी गई। पोलिंग पार्टियों व चुनाव से जुड़े अधिकारियों को तमाम चुनाव प्रक्रिया के बारे में एक बार फिर विस्तार से बताया गया, ताकि वे मतदान के कार्य को पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ सम्पन्न करवा सके। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनें इसी काउंटर पर आकर जमा करवानी होंगी। मतदान 8 बजे शुरू होगा और सायं 6 बजे तक चलेगा। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार प्रातः 7 बजे मॉक पोल भी होगी। फरीदाबाद जिले में कल होने वाले पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन फरीदाबाद ने गांव शाहूपुरा खादर ब्लॉक तिगांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या शांति भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने कहा है, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका चुनावों में मतदाताओं की सुविधा तथा अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी मतदाताओं को वोटर पर्ची वितरित की गई है। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि चिन्हित मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सत्यापन एवं पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायुक्तों को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपना वोटर कार्ड अथवा राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा निर्धारित अन्य कोई वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा। श्री गौरव कुमार ने बताया कि सभी उपायुक्तों को दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर सहायता बूथ तथा पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा ने जींद वासियों को आश्वासन दिया है कि जिन कॉलोनियों को सरकार द्वारा अधिकृत किया जा चुका है उनमें सीवरेज लाइन बिछाने और गलियों के निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वे आज जींद में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर कृष्ण मिठा ने बताया कि जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें सीवरेज और फैमिली आईडी से संबंधित आई हैं।
3: लोगों की जो समस्याएं थी उसका साथ ही साथ आलोचक किया, बाकी डिपार्टमेंट्स को हम कागज भेज रहे हैं और उम्मीद है कि हर कार्य जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ज्यादातर सीवरेज को लेके या आईडी को लेकर समस्या, सीवरेज तो हमने क्या देखी, जो जो कॉलोनी को ऑथराइज कर दिया गया उन पर पूर्ण रूप से सीवरेज की और गलियां बनने की व्यवस्था हो जाएगी।
0: उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर चल रही खींचतान पर कहा कि जल्द ही बातचीत के जरिए समाधान निकाल लिया जाएगा और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। नौकरियों के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर डॉक्टर मिठा ने स्पष्ट कहा, प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह पारदर्शी है। आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर सरकारी नौकरी पा रहा है। भिवानी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी व लोहारू न्यायिक परिसर में लगाई गई लोक अदालत में आपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 27,173 में से 11,476 मामलों का निपटारा किया गया तथा 3,87,57,457 रुपए की राशि का निपटान किया गया, जबकि लोहारू में 70 में से 43, तोशाम में 72 में से 29, सिवानी में 65 में से 37 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं का एक जत्था आज तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शन के लिए पहुंच गया। श्रद्धालुओं के नांदेड़ साहिब पहुंचने पर नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर विजय सतवीर सिंह ने कहा कि इस योजना से संगत को गुरुओं की कुर्बानी, सिख इतिहास और देश की प्राचीन धार्मिक विरासत को जानने का अवसर मिला है। मुख्य समाचार एक बार फिर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भजन भाई अनिल भाई के राम राम। और मैं अपना संध्या समय है और बड़ा ठीक सा मौसम हो रहा है। दिन में अच्छी गर्मी भी थी और मौसम में आगे बदलाव भी होंगे और वे इतने चल रहे हैं। बाकी तो बुजुर्ग भैया भी कहा करते हूँ, तो देखो जिसको पानी की मार के पेट में फंस गया, मतलब जिसका लागे वो है जाना है। बाकी बुजुर्ग देखो पहले पानी के बहुत थोड़े होया करते, भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे होया करते और भाई खेतों में ढाबों का जोड़ियाँ का पानी मुद्दे पड़ पड़ पिया करते। और बाकी बुजुर्ग कहा करते बोला भाई जितनी आंधी उतनी मी, उतने भाई जितने भी आंधी हैं उतनी बारिश, और बोला भाई मेयर तो बरसत बोले बोले होनी हो सो मीन बड़ा एक मान्या करते बुजुर्ग। और भी कहा करते बोला भाई अगर भाई कोई भी काम है सब छोड़ के पानी लाओ, पानी कवार हो और भाई आगे के भैंस तीन रल दियो तो भाई भैंस ने तीन रलवाओ, और बोला भाई भैंस तीन रल दियो और भाई ब्याह शादी हो तो बोला भाई सारा काम छोड़ के ब्याह शादी करो, यानी कि मनसाए तोड़े होया करते। उनके अलग अनुभव अलग विचार और सूरज का नहीं एक बोला खांदे बोला ओहो बोला भाई पैर का तड़का हो गया ये हो गया, सारा मौसम विज्ञान उनके दिमाग में था सारी जो भी चीज़ें थी। और बड़ा बोला तितर पंखी बादली बोला भाई रोल माचेगी सारा बेड़ खड़चाड़ मारने लग जाती, सारे नज़रिए उनके नुस्खे। और ये चीज़ भाई देखो बड़ा अगर उन तक दौर बैठे ना, आज भी वो था ज्ञान का भंडार है। और ना ये चीज़ उन्हें लिख रखी, ना कोई बही में लिख रखी, ना कोई डायरी में लिख रखी, ना कोई भाई उनके टाइम में कोई एंड्रॉयड फ़ोन थे, कोई रिकॉर्डिंग पिकॉर्डिंग कुछ भी होता हो। घने जो मोरा कई पीढ़ियाँ हैं बुजुर्ग हैं उनका कोई एक आधा सीधे चढ़ा फोटो भाई अपने बैठक बैठक में कोई दूसरा रंग रंग खंड का लगवा के रिच डाल। बाकी तो उस टाइम पर जो भाई जीवन था अपने थेकड़ी लागिया करती बाढ़ और भाई अपना घनी अगर समस्या होती तो आपस में कि मुदारा सुधारा ले लेंदे, चादरा रह कितने गांव गमी ने जाने होंदे और आमतौर पर पैदल डांगर डोर ले जाने, पैदल भाई अपना खेत के में जाना या फिर भाई ब्याह शादी में बड़ी गाड़ी जो होया करती। बड़ी गाड़ी का मतलब होंदी तो बड़द गाड़ी है लेकिन जो लंबी होया करती तो वो लेके जाया करते। सारा जीवन एक परिसर का उन्हें बिताया है, उनके पास बैठा तो वह था ज्ञान का भंडार है। बाकी कुछ आज की चीज़ हैं तो हमने गूगल पर भी मिल जाएंगे, सारा मेरा पड़ जाए, लेकिन उनके जो एक तजुर्बे हैं और उनका एक जो भाई सब चीज़ का विज्ञान है, अरे पुरानी बात भाईचारे की उसकी केवरा कह पीढ़ियाँ थी कि बता देंगे। आजकल किसे पोते ने पूछ ले भाई तेरे बाबा नाम के है, पहले सोचेगा फिर भाई अपना मनवा ना भी बतावे को बना स्याणा वाले को बता भी दे। ये जीवन हो गया किसी नू कह दे भाई हिंदी का तो दूर जाते जा रहे हैं और अपनी जो भी मातृ बोली है हरियाणवी उस तो दूर होते जा रहे हैं। कोई बालक हरियाणवी बोल रहा है तो घर के ठबक भी दे हैं, देखो अपनी बोली है और ये चीज़ें। और जो पुराने उनके जो नाम थे ना जो पढ़ाई थी बोले चार डाउन दस, आज अगर कैलकुलेटर नहीं हो तो भाई ना तो दूध का हिसाब हो और ना है भाई कोई चीज़ पढ़ाई जा, और वो आंगड़ियाँ पर आख्या करते सिटाई की पढ़ाई और नु कहा करते भाई पढ़ रहे को नहीं कढ़ रहे हैं। हरेक चीज़ में आग गए, हरेक चीज़ में सम्मान देना साथ देना। पहले बुजुर्गों का जो खंगारा था एक बार खंगारा मार दें दे भाई को अपना बोड़िया बहू आती अपना सावधान हो जाती। बहुत ये एक कोई तानाशाही नहीं थी, ये एक भाई कोई

दबाना नहीं था, ये एक सिर्फ इतना था कि एक मान सम्मान था जो हमारी बूढ़ी ताई दादी चाची जो भी भाई जो बोढ़िया बहू पाए दाब्या करती, ये कोई ना गुलामी थी ना कोई ये होता, बस ये एक उनका आशीर्वाद जो एक उनके फड़े भी फूल्या करते, दूध नाओ पुतो फड़ो जोड़ी बनी रहे, राम राम श्याम श्याम, एक सारा जीवन का ताना बाना था वो आज हम देखा बदलाव की तरफ हो गया। आज भी कोई 50-60 साल के आसपास की जुबान बेटी बुआ कोर भी बढ़िया आ जाए तान दी बता दे भाई फलाने का है उन यार मिले है, या फिर हम राम राम कर दें तो पूछे कि भाई किसका है। आज भी अगर कोई 50-60 साल के आसपास की बाण बेटी आओ है हमारी निगाह नहीं पड़े बेशक बड़ी है तो भी आप आगत राम राम करेगी, लेकिन आजकल के बच्चे अगर हम कितने शहर में जावा कितने बाहर जावा बस में मिल जाए जी बेशक पास की सीट पे बैठी हो तो भी उन्होंने कहे भाई तू ताऊ है चाचा है किज्जा है के है, ये सारा भाई पढ़ाई शिक्षा आई। और देखो शिक्षा आने के बाद में बहुत एक ये हो गया था भाई सब की बहुत बढ़िया हो गया, जय विज्ञान भी साथ में जय जवान जय किसान जय विज्ञान भी जोड़ा तकनीकी आ गई, लेकिन शिक्षा अंधकार तय हमने प्रकाश की ओर ले जाए है और हमने उल्टा कर लिया, दो पीछे नौकरी मिलती है काम छोड़ दिया अपने शहर में डेरे, ना को बाण तो मतलब ना को बुआ तो मतलब ना को रिश्तेदारी ना को नाते, और बस अपना जीवन अपना मस्त भीतर की साकड़ सा न थोड़ा बहुत भाई को टहल ले तो टहल ले, कोई पता लग जाए निजी अगर गांव में माँ गुजर गई बाप गुजर गया जिब ये टेमा टेम में उनके आने हुए हैं, तो ये सारा जीवन शैली जो बना दी ये हमने खुद ने बनाई है ना कि शिक्षा ने, शिक्षा तो अंधकार तो प्रकाश की ओर ले जाए हमने, और जो नई तकनीक साधन चाल के खेती बाड़ी के पहले बुजुर्गान भाई काम भी बहुत होते और उसके साथ साथ में कामा के साथ साथ में फिर भी वो टेम दिया करते सामने पौड़िया में बैठ काम बाट देखा करते, फलाना नहीं दिखा भाई झगड़ा नहीं दिखा भाई, आज हम मोटरसाइकिल ट्रैक्टर साधन कार बाजम बाज जाके खड़े होना कोई काम नहीं और फिर भी हमारे पास टाइम नहीं, फिर भी हमारा वो है बोला भाई का गर्म ले लांडा तीन का और उनको भी दाने की दप्पियाँ की सब क्या है कि भाई दिक्कत थी और फिर भी वो 100-100 साल जी गए भले कुआ गए, आज भी जिक्र चल रहे हैं फलाना बूढ़ा भाई मारे जो काम आया उसने ये कराया उसने ये कराया उसने ये कराया, तो ये जीवन शैली है जो हमारी थोड़ा सा बदलाव हम करें बुजुर्ग का सम्मान करें उनके पास बैठे हैं और जो कृषि खेती बाड़ी के जो आधुनिक यंत्र आए हैं उनका भी हम ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अपना जो थोड़ा बहुत शरीर की मेहनत है हल्की पुड़की वो हम नहीं छोड़ रहे, क्योंकि एक बार शरीर का भाई देखा डारा से बैठ गया ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाए, पेट की समस्या बहुत होगी एडियों की समस्या बहुत होगी गोड्डे की समस्या बहुत होगी दुखन की और दिमाग चक्कर काटी जाए जो पैरासीटामोल की गोली हो रही है वो तो इसी हो रही है, टॉफी लें दुकान में डॉक्टर कह दियो जी ब्लैक 10 रुपया पत्ता दियो जी 15 रुपया पत्ता और वो भाई 5-4 दिन में सारी साफ और कदे न किते न किते किते न किते वो भाई उनका साइड इफेक्ट जो उनके विकार हैं दिमाग की नस पाटन की हार्ट की जो समस्याएँ हैं रक्तचाप जो बढ़ने की समस्याएं हैं ये धीरे धीरे किते न किते रूप ले रही है, अपने देसी नुस्खे अपनावें देसी अपना खान पान सात्विक रखें दिमाग ने थोड़ा सा भाई सेंटर में रखें और जो भी अपने छोटा मोटा बने खेत का क्यार का और नहीं तो अपने सांस से भी पाएँ से ले जा छोटा मोटा खांड है धानना है संवारना है भाई सप्रे मारने लग रहे हैं, आज हम इन चीज़ों का अनुकरण करेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो बच्चे हैं युवा होंगे वो तो फिर टोला ही नहीं मारा खेत में, तो थोड़ा सा जितना भी हो उसके धरती माता की तासीर ने सुधारे नई अपने जो तकनीक आ रही हैं ऑर्गेनिक जो एक खेती चल रही है प्राकृतिक जो खेती चल रही है उसके साथ हम जुड़े कैचमिक खाद है और भाई गर्मी का मौसम आ गया ये थोड़ा जीव जंतुओं का भी हमने पूरा देखो ध्यान रखना पड़ेगा, खेत क्यार में जो भी अपने जोड़ी हैं तालाब हैं खून भरो क्योंकि जमींदार का कर्म और धर्म का धर्म पाप पुण्य बराबर जब भी हो है जब हम प्रकृति के साथ भाई पशु पक्षियों के साथ जीव जंतुओं के साथ कुछ करें हैं पहले पैर छोड़ दिया कर दे हर भाई नाजपात खिंडदा भी कीड़नाल भी आज के है सीधा अपना भाई अल्ले सीधा ट्रेली के अंदर डंपर के अंदर हर ले गए जो भी जोड़ हैं तालाब हैं उनमें हम पानी पाट डाल लें और भाई अपना जो छाता पे कोई गमले रहे कि मैं और रह पानी के वो भाई दर दें बड़ा एक सात्विक देखो गोरैया जो चिड़िया है कबूतर हैं बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो हम देखें पेट पर मुंह पाड़ी पाऊंगे या फिर खेत में भाई नील गाय हैं खरगोश हैं बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो पानी तो वंचित हिबा करेंगे और भाई कुत्ते रहे बिल्ली रहे बहुत अच्छा एक सात्विक क्रम हम एक ये बनावा सिस्टम खेत के आर में जाऊँ तो भाई 5-4 लीटर पानी ले जाऊँ भी नहीं तो कोई ठेकरा रहे पेड़ के नीचे आस पास तो उसमें ज़रूर डालें
थोड़ी बहुत दाना

0: पैदा पा रहे, तो खेती बाड़ी के साथ हमने जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे मित्र हैं, अगर भाई इनका साथ है तो फिर हमारे पास वो सम्मत भरे समय आएंगे, और इनका साथ नहीं है, इन हम भाई कम करते जाऊंगे तो देखो प्रकृति में बहुत सारा ऐसा है, संतुलन अगर खराब हो गया तो फिर बाकी हो भी रहा है, और दिन भर इसके जो हालात हैं बिगड़ते हालात हैं वो हम देखने लग रहे हैं। बेमौसमी बारिश है, गेहूँ के टाइम पर सारे गेहूँ पड़ जाए कितने भाई, ये भी आप देखो पश्चिमी विक्षोभ के कितने असर हो लिए, बाग भी 10 के बाद 11 के आसपास 13 तक बता रखे है। तो थोड़ा सा ये है कि हम अच्छे पेड़ पौधे अपने खेत में लावें, कोई फल का पेड़ डाको रिश्तेदार प्यारे आ जाए के दिखावा भाई उन्हें खेत में, अभी केला रखा है तो इन बातों भाई हम जरूर भी ध्यान रखें। और मकसद भी ये है कि भाई बातचीत सुनवा दें, जो आग से दुर्घटना हो जाए समस्या हो जाए उनसे किस तरह बचा जाए।
1: आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा आग की दुर्घटना बचाव और इससे निवारण के उपाय। और इसके लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री दीपांशु महलाव जी को। आप फायर स्टेशन ऑफिसर हैं और रोहतक और झज्जर का आप कार्यभार देख रहे हैं। दीपांशु जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद जी सर।
1: सबसे पहले तो जानकारी चाहेंगे कि आग लगने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें होनी आवश्यक होती हैं।
2: पहले एक कॉन्सेप्ट था फायर ट्रायंगल,
1: जी
2: जिसको अभी इम्प्रोवाइज करके एक फायर टेट्राहेड्रन बना दिया गया है।
1: जी
2: पहले तीन हमारे एलिमेंट्स होते थे, किसी भी आग को लगने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती थी।
1: जी
2: एक नेचुरल एयर, जिसमें मेन प्रोडक्ट एक ऑक्सीजन होता है जो हमें चाहिए होता है फायर लगने के लिए। एक फ्यूल, जो कोई भी एक चीज़ हो जिसमें आग लग सकती है, और टेम्परेचर।
1: तापमान।
2: तो जी,
1: जी
2: अब जो फायर टेट्राहेड्रन आया है उसमें एक केमिकल चेन रिएक्शन इंक्लूड कर दिया गया है। कोई भी फायर लगती है तो वो फायर उस चीज़ में नहीं लगती जिस चीज़ में हमें दिखाई दे रही है, वो उस चीज़ में लगती है जो उस चीज़ से टेम्परेचर की वजह से उत्पन्न हो रही है।
1: जी
2: गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को हम हीट करेंगे तो गैसियस पार्टिकल्स निकलते हैं, वो कम्बस्टिबल होते हैं, उनकी वजह से फायर लगती है। और एक बार किसी भी कम्बस्टिबल गैसियस पार्टिकल ने फायर पकड़ी हीट की वजह से, तो वो केमिकल चेन रिएक्शन की तरह चलता जाता है। जैसे ही वो फायर पकड़ेगा वो और हीट जनरेट करेगा जिससे दूसरा पार्टिकल पकड़ेगा, और ऐसे ही ये चेन रिएक्शन चलता जाएगा।
1: जी
2: तो इनको बुझाने के तरीके भी मैं बता देता
1: जी
2: हूँ।
1: उससे पहले थोड़ा
2: जी
1: सा
2: जी
1: जानकारी चाहेंगे कि जैसे कहते भी कई प्रकार की आग होती है, वो लकड़ी की अलग है
2: जी
1: और रसायनों
2: इनको
1: की।
2: हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
1: जी
2: क्लास ए फायर्स होती हैं जिसमें जो कम्बस्टिबल मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है,
1: जलने वाला पदार्थ है
2: जी,
1: वो।
2: जिसमें पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब
1: जी
2: आते हैं।
1: जी
2: क्लास बी में लिक्विड मटेरियल्स होते हैं,
1: तरल
2: पेट्रोल,
1: पदार्थ।
2: डीजल,
1: जी
2: जी। और क्लास सी में हमारे गैसियस मटेरियल्स होते हैं। क्लास डी में जो हमारे केमिकल मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं। उनके
1: रासायनिक
2: हिसाब
1: और
2: से डिफरेंट टाइप ऑफ फायर क्लासिफाइड की गई हैं।
1: जी यानी कि ये जो जलने वाला पदार्थ है वो किस रूप में है उसके ऊपर आधारित है ये।
2: हाँ जी, क्लास डी में ज़्यादातर, मतलब मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ इसमें,
1: जी
2: रिएक्टिव मेटल्स होते हैं
1: जी
2: जो हीट मिलने पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। तो ऐसे मटेरियल्स को की जो आग होती है उसको क्लास डी में रखा जाता है।
1: जी
2: जी
1: अब बात करते हैं कि इनकी जो ये जो घटनाएं होती हैं, अगर हम खेत की बात करें, घर की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो इनमें किन-किन वजह से ये दुर्घटनाएं वो ज़्यादा होती हैं।
2: देखिए, वजहें तो बहुत सारी हैं,
1: जी
2: लेकिन जो मेन वजह आजकल हमें जो दिखाई दे रही है वो एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसको मॉडिफिकेशन के लिए, लुक्स के लिए, देखने के लिए,
1: जी
2: ताकि वो अच्छा दिखाई दे, उसमें जो मॉडिफिकेशंस हम कर रहे हैं घर के अंदर, सपोज़ फॉल सीलिंग लगा रहे हैं
1: जी
2: हम, कारपेट्स बिछा रहे हैं हम, वुडन वर्क ज़्यादा देख रहे हैं,
1: लकड़ी का काम बढ़ रहा
2: जी
1: है। जी
2: उन। और घर में जैसा कि आपको पता ही है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे चलते हैं
1: बिजली के सारे
2: जी,
1: सामान।
2: और उनकी
1: जी
2: वायरिंग अंडरग्राउंड ही की जाती है।
1: जी
2: तो जो फॉल सीलिंग के ऊपर वायरिंग है या जो कारपेट के नीचे से वायरिंग जा रही है, तो उन चीज़ों का हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे कब क्या हो जाता है।
1: जी
2: मेन पर्पज, मेन जो कॉज दिखाई दिया नज़र आता है वो आजकल शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई भी ऐसी चीज़ आग पकड़ लेती है जिससे पूरे घर में फैल जाती है।

0: जी
1: अब आप फॉल सीलिंग को ही ले लीजिए, अगर फॉल सीलिंग के ऊपर कोई शॉर्ट सर्किट होता है उसकी वजह से जो स्मोक निकलेगा
0: धुआं निकलेगा
1: उस वो स्मोक ऊपर ही ऊपर ट्रैवल कर जाएगा, नीचे किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ कुछ फायर हुई है या कोई इंसिडेंट हुआ है, जब तक जा चुका होता है टाइम।
0: देर हो चुकी काफी।
1: जी,
0: जी
1: और रही बात दूसरे कॉज की, न्यूसेंसेस बहुत होते हैं आजकल। सपोज़ आज अब गर्मी का जो सीज़न चल रहा है, इस गर्मी के सीज़न में हमारे गेहूं की कटाई होती है।
0: जी
1: कटाई होने के बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होता है उसमें ज़्यादातर लोग, मैं सबका नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ज़्यादातर लोग उसमें आग लगा देते हैं, उसको सफाई ना करनी पड़े। पहले ये सारी चीज़ें हमारी घर में यूज़ हो जाती थी, हमारे पास कैटल्स होती थी उनमें यूज़ हो जाती थी, लेकिन अब ये जो ट्रेंड है वो जलने का है, जिसकी
0: जी
1: वजह से पोल्यूशन भी बढ़ता है और हमें दिक्कत भी बहुत आती है।
0: जी
1: इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आजकल आग नज़र आ रही है। सपोज़ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनका जो डिस्पोजल हो रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा।
0: उद्योगों से निकलने वाला कचरा
1: जी
0: है।
1: जी
0: जी
1: उसको लोग खाली जगह पर देखकर वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं
0: जी
1: और इकट्ठा करने के बाद कहीं से भी किसी भी तरीके से, मे बी इट इज़ हीट और एनी काइंड ऑफ सोर्स, उसकी वजह से वो आग पकड़ लेता है। और उस आग को बुझाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उसमें केमिकल्स इंक्लूड होते हैं
0: जी
1: इंडस्ट्रियल में, और पॉल्यूशन तो है ही।
0: पर्यावरण प्रदूषण
1: जी
0: साथ में होता है। अब बात करेंगे कि इनसे किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है, ये जो अलग अलग प्रकार की आग बताई आपने।
1: जितनी भी सपोज़ आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ही ले लीजिए, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, हम स्टार्टिंग में ठीक है एक चीज़ ये सोचते हैं कि हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाए और हम एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद के लगा देते हैं, लेकिन बाद में जब वो चीज़ें दिक्कत देती हैं तो वो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जो हम कभी संभाल नहीं पाते।
0: जी
1: जो क्वालिटी प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, घर में सबको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो हम कैसे डील करेंगे। अब सब शॉर्ट सर्किट ही है जैसे, तो सबसे पहले आप अपनी एमसीबी, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं उनको एमसीबी पता ही नहीं है होती क्या है,
0: जी
1: तो उसको डाउन करो और उसके बाद आप बेशक पानी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रिकल चीज़ नहीं रही, वो फिर एक सॉलिड चीज़ हो गई।
0: जी
1: अब जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तब तक ही वो कंडक्ट करेगी।
0: कई बार ये देखने में आता है कि जो
1: जी
0: ही कहीं आग दिखाई देती है भाग के पानी डालने की कोशिश रहती
1: हाँ
0: है,
1: जी, तो हर आग पे पानी काम नहीं देता
0: काम
1: सर।
0: नहीं करता है।
1: जी, और जैसे कि मैंने पहले बताया क्लासेस ऑफ फायर में अलग अलग प्रोडक्ट मतलब फ्यूल यूज़ होता है हमारी फायर्स में,
0: जी
1: तो सब हर फ्यूल के लिए एक अलग अलग प्रोडक्ट बनाए गए हैं जिनसे हम उनको कंट्रोल करते हैं। सपोज़ आप पेट्रोल की आग ले लीजिए, तो पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझेगी, वो उसको ठंडा तो ज़रूर कर देगी लेकिन वो बुझा नहीं पाएगा।
0: जी
1: हमें पेट्रोल की आग में जो एयर कंटेंट है जिससे उस फायर को ऑक्सीजन मिल रही है, उस एयर कंटेंट को काटना है। जो टेट्राहेड्रन है उसमें से किसी भी एक पार्ट एलिमेंट को हम हटा देंगे तो वो हट जाएगा, फायर बुझ जाएगी। तो जो पेट्रोल की फायर्स हैं उसमें एयर कंटेंट को आप हटा दीजिए, ऑक्सीजन काट दीजिए उसकी, वो बुझ जाएगी। आप उस जिस भी एरिया में अगर पेट्रोल की आग है उसको आप कन्फाइन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। और उस बंद करने के बाद उस चीज़ को आप ठंडा करें, ठंडा करने के बाद जो पेट्रोल के फ्यूम्स हैं वो कम बनेंगे और वो ब्लास्ट भी नहीं करेगा और फायर भी नहीं लगेगी। दूसरा सबसे अच्छा मेथड होता है उसको ब्लैंकेट करना,
0: जी
1: कि उसको ऐसी एक कोई परत ऊपर बिछा दीजिए जिससे एयर कट जाए और फायर बुझ जाएगी। उसके लिए हम फोम यूज़ करते हैं, जो ए
0: झाग
1: ट्रिपल एफ
0: वाला जो
1: हाँ जी ए ट्रिपल
0: जी
1: एफ फोम होता है
0: जी
1: वो यूज़ करते हैं हम। तो ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिकल फायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल फायर्स इन द सेंस किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई फायर लगी है, शॉर्ट सर्किट मेन कॉज जो माना जाता है, उसमें ज़रूरी नहीं है वो शॉर्ट सर्किट भी हो, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो ओवरहीट हो जाता है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है।
0: बिजली का उपकरण
1: जी
0: ज़्यादा
1: जी
0: गर्म हो जाने की वजह से
1: जी
0: भी
1: जी
0: संभावना रहती है।
1: जी तो उस केस में आप सीधा उस अप्लायंस को डिसकनेक्ट कीजिए, कोशिश करिए उसको डिसकनेक्ट करने की।
0: मतलब सबसे
1: अगर
0: पहले तो ये है कि उसका बिजली का जो सप्लाई है वो बंद कर दें,
1: जी
0: सबसे पहले ये काम करना
1: सबसे
0: होगा।
1: पहले वो काम करना होता है
0: जी
1: घर में भी, अगर कोई भी छोटा इंसिडेंट होता है घर में, क्या कहीं भी कोई
0: जी
1: छोटा
0: जी
1: इंसिडेंट होता है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी कट आउट कर दीजिए
0: ठीक है
1: ताकि पानी अगर आप मारोगे तो वो वाटर कंडक्ट ना करे। तो उसके बाद आप पानी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल चीज़ों पर,
0: ठीक है
1: वो नॉर्मल एक सॉलिड चीज़ हो जाती है।
0: जी। तो ये तो वहाँ बिजली के जो उपकरण हैं वहाँ
1: जी
0: पर उसमें अगर आग लग जाती है।

0: दूसरा आपने बताया रसायनों का, यानी
1: जी
0: कि उसमें पेट्रोल है, डीजल है, इनमें आग
1: जी
0: लग जाती है, तो उसमें भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी प्रकार से उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई है, यानी कि जहाँ से उसको
1: कट
0: जलने
1: ऑफ
0: के
1: कर
0: लिए
1: दिया जाए
0: ऑक्सीजन मिल रही है, उसको हमने हटाना है, उसको हमने काटना है।
1: जी।
0: एक आम दुर्घटना घरों में होती है, वो है सिलेंडर, गैस सिलेंडर में
1: हाँ जी
0: लीकेज
1: हाँ
0: की
1: जी
0: वजह
1: हाँ
0: से,
1: जी
0: तो उसको किस तरह से काबू पाया जाए?
1: गैस सिलेंडर्स की जो फायर होती है, एक्चुअली जो गैस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं वो बहुत टेस्ट होने के बाद ही घरों में दिया जाता है, वो ऐसे फटेगा नहीं।
0: जी
1: वो फटेगा तब जब वो 700 800 डिग्री 1100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक वो नहीं पहुंचता। अगर उसमें से थोड़ी बहुत गैस निकल रही है
0: जी
1: और उसमें आग लगी हुई है तो अच्छी बात है, उसमें आग लगी हुई है, क्योंकि एलपीजी जो गैस होती है वो सेटल करती है ग्राउंड पर, क्योंकि वो इट इज़ हैवियर देन एयर,
0: जी
1: हवा से भारी है, वो भारी होने की वजह से वो हवा में उड़ती नहीं है, वो नीचे बैठ जाती है। और जैसे ही वो बैठेगी, वो जहाँ तक वो बैठ पाएगी, और जैसे ही उसे कोई इलेक्ट्रिकल या कोई भी स्पार्क
0: छोटी सी कोई
1: मिला,
0: चिंगारी मिलती
1: कुछ भी
0: है।
1: स्पार्क मिला, तो वो वहीं से आग लगेगी, और जहाँ तक वो सिलेंडर था वहाँ तक वो आग लगेगी और ब्लास्ट करेगी।
0: जी
1: अच्छी बात है कि अगर सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है और उसमें आग लग रही है, वो अच्छी चीज़ है,
0: अच्छा
1: उसको एकदम बुझा के,
0: जी
1: और आप ये ना माने कि वो आग बुझ गई है,
0: जी
1: उसमें से गैस अभी भी लीक हो रही है, वो
0: जी
1: ज़्यादा खतरनाक होती है।
0: जी
1: हाँ, अगर आपके घर में या कहीं पे भी सिलेंडर में आग लगी हुई है तो कोशिश कीजिए उस सिलेंडर को आप कूल करें
0: ठंडा कर दें
1: जी,
0: उसको,
1: उसकी जो
0: पानी डाल
1: बॉडी
0: के।
1: है सिलेंडर की, जो बॉडी है उसमें पानी डालते रहें,
0: जी
1: वो कूल रहना चाहिए। उसमें जो लीकेज हो रही है और उसमें आग लगी है, दैट इज़ नॉट एन इशू, वो कोई दिक्कत नहीं देगा।
0: जी
1: उसके आसपास से सामान हटा दीजिए और उसको ठंडा करते रहिए। कोशिश करिए रेगुलेटर बंद कर दें, सबसे अच्छी चीज़ होती है,
0: जी
1: क्योंकि बॉडी सिलेंडर की ऐसे नहीं फटती, लीकेज होगा या तो उसकी जो नाली लगी हुई है रेगुलेटर से गैस स्टोव तक, वहाँ उसमें लीकेज होगा, नहीं तो रेगुलेटर से लीकेज होगा, बीच में बॉडी में से कोई लीकेज नहीं होता है।
0: जी
1: और रही बात आप मतलब जनरल सिविलियंस होते हैं, उनको जैसे ही लगता है कि हाँ सिलेंडर में आग है तो वो डर के भाग जाते हैं,
0: जी
1: डर के ना भागें, आसपास के सामान को हटाएं, कोशिश करें सिलेंडर को उठा के खुले एरिया में रख दें।
0: जी
1: रखने के बाद एक गर्म कपड़ा, सॉरी कोई भी कपड़ा लें, उसको गीला करें,
0: जी
1: बोरी हो गई, कंबल हो गया, उसको गीला कर लें, गीला करके उसमें लपेट दीजिए। लपेटने के बाद जब उसको आप पूरा लपेट देंगे, उसकी एयर कट आउट हो जाएगी, वो फायर बुझ जाएगी, और
0: हवा
1: रेगुलेटर
0: का
1: से
0: संपर्क टूट जाएगा
1: जी
0: उससे।
1: जी और रेगुलेटर से वो गैस जो निकल रही थी उसको बंद कर दीजिए। अगर वो कहीं ऐसी जगह लीकेज है जहाँ आसपास आपकी कोई टंकी है,
0: जी
1: कोई झोड़ है या लेक है जिसे हम कहते हैं, उसमें डाल दीजिए,
0: अच्छा
1: उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो
0: जी
1: अपने आप कूल हो जाएगा और जो गैस लीकेज होगी वो बाहर नहीं आ पाएगी प्रेशर की वजह से।
0: जी अच्छा, कई बार दुर्घटना का हमें कारण नहीं पता चलता है, कई बार रबड़ है वो पुरानी हो जाती है, या कोई खाने की चीज़ पड़ जाती है तो चूहे काट जाते हैं, तो इस तरह से कई वो इसके
1: ऐसे
0: कारण रहते
1: भी
0: हैं।
1: जी, ऐसे भी इंसिडेंट बहुत होते हैं कि रसोई में अगर सिलेंडर रखा है या कोई भी इक्विपमेंट रखा है जिसमें रबर यूज़ हो रही है, कोई नाली यूज़ हो रही है, तो उसको चूहे काट देते हैं,
0: जी
1: और इस चीज़ का ध्यान आमतौर पर हम नहीं दे
0: नहीं
1: पाते,
0: जी
1: पता नहीं चलता।
0: जी
1: हाँ, कारण ना पता चले बात अलग है, लेकिन जो जब आपको पता चलेगा फायर हो रही है तो अच्छी चीज़ है कि उसको आप बाहर उठा के ले जाइए, खुले एरिया में रख दीजिए, बेस्ट सबसे वही होता है, और उसको ठंडा करते
0: मतलब
1: रहिए।
0: उसमें घबराने की बात नहीं है, अगर
1: कोई
0: आग
1: घबराने
0: लग
1: की
0: गई है
1: जी
0: तो भी
1: जी
0: आप
1: हाँ
0: उसको उठा के ले जा सकते
1: जी
0: हैं, वो
1: जी
0: एकदम से नहीं
1: नहीं
0: फटेगा।
1: फटेगा,
0: जी
1: वो ऐसे नहीं फटेगा, आप किसी कपड़े से उसको पकड़िए,
0: जी
1: उसको ले जाइए, और कोशिश करें उसको मतलब उसको रोल ना करें,
0: जी
1: रोल करने पे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, रोल ना करें, सीधा उठाएं और सीधा उठा के ले जाएं।
0: उसको घसीट के जैसे
1: हाँ, वो ना
0: ले जाएंगे,
1: करें,
0: लुढ़का के लेके
1: नहीं
0: जाते
1: नहीं
0: हैं,
1: वैसे नहीं
0: वो नहीं करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: अच्छा, अब अगर हम आजकल की बात करें तो आज की जो स्थिति है उसमें अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उससे किस प्रकार से बचाव किया जाए?
1: आजकल जैसे कि आपको पता ही है गर्मियों का सीज़न चल रहा है, और गर्मियों के सीज़न में जो हमारे यहाँ पर रोहतक और ख़ास तौर पर झज्जर में जो आग देखी जाती हैं वो हीट की वजह से देखी जाती हैं, जो एक्सटेंसिव हीट आजकल बढ़ रही है
0: गर्मी की वजह
1: जी
0: से
1: जी जी
0: जी
1: और खेतों में जो आग लग रही है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहाँ भी लग रही है, तो जो आग लग रही हैं उनसे बचने के लिए हमें आसपास के जो अपने उपकरण हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए
0: जी
1: कि हाँ, हमारा अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमें कौन सा उपकरण कब यूज़ करना है और कहाँ रखा है, कैसे यूज़ करना है। इसके लिए आप हमारे जो लोकल फायर स्टेशंस हैं वहाँ पर रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि आप हमें ट्रेनिंग दीजिए, और हम तत्पर खड़े हैं इस मामले में
0: जी
1: कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे। आपको जो अप्लायंस आपने अपने घर में या इंडस्ट्री में या कहीं भी लगा रखे हैं या नहीं भी लगा रखे हैं, तो जनरल वे में जो हमारे घर में आमतौर पर चीज़ें होती हैं उनसे हम काम ले सकते हैं किसी इमरजेंसी में। और माइंडसेट जो है वो घबराने वाला नहीं होना चाहिए,
0: जी
1: वो प्रॉपर आप रखिए। वो सिर्फ आपका ड्रिल से ही बनेगा, बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें ठीक होंगी, तभी आपका मानसिक संतुलन जो इमरजेंसी के टाइम पे रहेगा वो स्थिर रहेगा।
0: अच्छा, आपने बात में बात की है ड्रिल की,
1: जी
0: तो अब जो स्थिति है इसमें हमें किस प्रकार की बातें ध्यान में रखनी चाहिए?
1: इस समय आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जिस भी जगह पर हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है,
0: जी
1: सुरक्षित स्थान क्या है,
0: जी
1: जहाँ पर जाकर आप अपने किसी सीनियर या किसी कलीग को ये बता सकते हैं कि उस पॉइंट पर ऐसी ऐसी चीज़ या इंसिडेंट हो गया है।
0: जी
1: दूसरा, जिस भी बिल्डिंग में आप रहते हैं वहाँ पे एक MCP होती है, मैनुअल कॉल पॉइंट्स,
0: जी
1: तो उसको आप जैसे ही एक्टिवेट करते हैं अपने आसपास, तो वहाँ और उस पूरी बिल्डिंग में प्रेमाइसिस में अलार्म बज जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि कोई तो इंसिडेंट हुआ है।
0: जी
1: उस केस में हो सकता है आप वो इंसान ना हो जिसने उसको एक्टिवेट किया हो, लेकिन आप वो इंसान हो जो उस एक्टिवेटेड अलार्म को सुन रहा है।
0: जी
1: तो जैसे ही आप ऐसा कुछ सुने या आप ऐसे एक्टिवेट करें, आप सीधा जो भी आप काम कर रहे हैं उसे छोड़िए, आप एग्ज़िट की तरफ भागिए, सीढ़ियाँ पकड़ के या किसी भी तरीके से आप ग्राउंड पे आइए, और जो आपका असेंबली पॉइंट होता है, हर बिल्डिंग में एक असेंबली पॉइंट बनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए पहले ही
0: कहाँ
1: कि
0: पर
1: हमारा
0: इकट्ठे हो सकते
1: असेंबली
0: हैं।
1: पॉइंट कहाँ है।
0: जी
1: वहाँ जाकर जितनी भी आपकी ऑक्यूपेंसी होगी, ऑक्यूपेंट जितने भी लोग आपकी बिल्डिंग में होंगे वहाँ जाकर इकट्ठे होंगे, और वहाँ ये पता करेंगे कि बाकी जो बचा हुआ था या बिल्डिंग में कोई रह तो नहीं गया, ये सब चीज़ें। कोशिश कीजिए सबसे पहले आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कीजिए, जो
0: जी
1: आजकल 112 112 जो नंबर है,
0: 112 नंबर
1: जी
0: पे। जी
1: आप उस पर कॉल कीजिए, वहाँ पे अपनी इमरजेंसी बताइए। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए उन्हीं को बताएं। जैसे ही आप उनको बताते हैं, आप जो अपनी बिल्डिंग में या प्रेमाइसिस में कहीं भी आप हैं, जो इवैक्यूएशन है वहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो पकड़ें और सीधा बाहर जाएं।
0: जी
1: दूसरी चीज़ ध्यान में रखने लायक ये है, आसपास की जो आपकी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, वर्किंग कंडीशन उनकी कैसी है, वो कैसे काम करती हैं, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप गाड़ी का ही इंसिडेंट ले लीजिए, जो CNG कार्स होती हैं या पुराने टाइम में LPG होती थी, जो गाड़ियों में सिलेंडर्स लगते थे, LPG से गाड़ियाँ चलती थी। आजकल की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें जो बैटरीज हैं उनकी वजह से बहुत फायर हो रही है, तो उस केस में सपोज़ कोई गाड़ी अगर फायर पकड़ती है तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप सब जैसे कि आपको सपोज़ शीशे बंद हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी है और उसमें आग लग गई है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपका कट गया है, गाड़ी आपकी खुल नहीं रही है और शीशे डाउन नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी गाड़ी में जिससे आप वो शीशा तोड़ सकते हैं, वो आपका हेडरेस्ट है। उस हेडरेस्ट को निकालिए और उसमें लोहे का एक क्या कहते हैं, सरिया टाइप
0: रॉड सी
1: होता है,
0: होती
1: रॉड
0: है, तो
1: होता है,
0: जिसमें कि
1: उससे
0: वो
1: आप मारिए
0: सीट के
1: और
0: ऊपर
1: वो
0: लगे
1: शीशा
0: रहते हैं।
1: तोड़ के आप बाहर निकलिए।
0: जी
1: दूसरा, जैसे जो ज़्यादातर लोग गियर लॉक्स लगाते हैं अपनी गाड़ियों में, चाबी होती है सबके पास, आजकल
0: जी
1: तो खैर पुश बटन स्टार्ट आ गए हैं लेकिन चाबियां भी होती हैं, उनसे भी आप ये काम कर सकते हैं। और जैसे आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्रीज़ में तो ज़्यादातर हमारे यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो लगा हुआ है एज़ पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ 2016, और जो उनकी टीम है वो भी काफ़ी ट्रेंड होती है फायर फाइटिंग या किसी भी इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए
0: जी
1: इंटरनल।
0: जी
1: बाकी एक्सटर्नली तो सर फायर ऑफिसेज हैं ही, फायर का जो स्टाफ है वो हमेशा खड़ा हुआ है।
0: जी तो जैसे आपने बताया है कि एक तो हमें सबसे पहले सावधानी रखनी है, और अगर कहीं भी गर्मी ज़्यादा होती है, कोई कोई भी उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम देखते हैं।

0: कहीं अगर ज़्यादा उसमें गर्मी उत्पन्न हो रही है तो उसको भी हमें थोड़ा सा ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बताया कि जो क्वालिटी अच्छी जो उत्पाद हैं, अगर बिजली की हम बात करें, तो जो ISI मार्क हैं या
1: जी जी जी
0: अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता वाले जो उपकरण हैं या बिजली के तार हैं, वो हम इस्तेमाल करें। हमारे घर में हमें पता होना चाहिए कि उसकी MCB कहाँ है, पूरे घर की लाइट है वो कहाँ से कटेगी। और उसके बाद में गैस सिलेंडर की आपने बताया कि उसके अगर ऑक्सीजन के संपर्क से उसको हटा दिया जाए तो गैस बंद हो जाएगी, उसमें आगे वो बुझ जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर अभी आजकल के जो हालात में जो स्थिति चल रही है, तो उसमें हमें सावधानी रखनी है। एक दूसरे को हमने सुरक्षित रखना है, खुद को भी सुरक्षित रखना है, और आसपास का हमारा एरिया है वो भी सुरक्षित रहे, इस बात का भी हमने ध्यान
1: ध्यान
0: रखना है।
1: रखना है।
0: दीपांशु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन सारे शहर को शेयर करने में,
0: जी
1: और हम तो ये चाहते हैं कि फायर से लोग जागरूक रहें और जो भी केसेस हैं उसमें जान और माल की हानि कम से कम
0: कम
1: हो।
0: से कम, जी
1: जी
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: तो भैया आपने सुनी पूर्व प्रसारित बातचीत आग की दुर्घटना से बचाव के बारे में, और ई बायन वैष्णवा देहरागनी गायक कलाकार हैं प्रवीण कुमारी।

तो भैया आपने सुनी रागनी का एक कलाकार थी प्रवीण कुमारी, और भैया इसी के साथ आज का कृषिगत कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल भाई दो इजाजत, सारे बण भैया ने राम राम। आकाशवाणी का यो भाई रोहतक के अंदर ई बाई सुनिंग कार्यक्रम ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार कार्यक्रम भाई आज शनिवार है, बारी रहेगी कार्यक्रम आपकी पसंद की। आपकी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस रागनी के साथ में, जिसके भी गायक कलाकार हैं पाले राम दैया, और उनके साथ ही फरमाइश भेजती भाई आप सब ने। आप हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, और इससे रागनी की फरमाइश भेजी है गाँव बागोद से आप हैं प्रकाश अम्बावता, सुबेदार खेमचंद, जयदयाल, ओम प्रकाश, बलबीर, वेद सिंह, नंद किशोर, और भाई इससे रागने की फरमाइश भेजी है केनरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका वंश बत्ता ने, और आप हैं बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश सिवानीवाल, सौरभ सिवानीवाल, रमेश वर्मा, आप सबकी फरमाइश पे रागनी गायक कलाकार हैं पाले राम दैया और उनके साथी।

ये पुरुष के सुत विश्वेश्वर ऋषि जिन तीन कामनी मनवाई उस कोटा के वे

कार्यक्रम की अगली रागनी वही गायक कलाकार हैं शकुंतला डांगी और उनके साथी फरमाइश साहब सबकी नंदगढ़ जींद से आप हैं मोहन दलाल संजय दलाल, कोटा गुवाणा से मैनपाल नागर और सिवानका से रामवीर बेरा की हवा सिंह दलाल, ग्यासरी उर्फ गादी बागपत उत्तर प्रदेश से कांसी राम दलाल, रामपाल दयानंद और धर्मवीर, तो आप सब की फरमाइश फिर अग्नि गायक कलाकार हैं शकुंतला डांगी और उनके साथी।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कलाकार रहेंगे भाई रणवीर सिंह बड़वासनिया और उनके साथी फरमाइश भेजिए आप सब ने। गांव चौटाला से भी दारा पंडित, संजय शर्मा, दिवानसु जोशी, बुलबुल जोशी, पुनीत पंचारिया। गांव जिंदर कला से आप हैं मासे सतवीर शर्मा, कौशल्या बाला और पूरा परिवार। मसीता डबवाली से दर्शन लोट, सूरजमल, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लोट। और इससे रागने की फरमाइश भेजी है आदर्श गांव बड़ियाली हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी, कमल कुमार, गर्विश बंसल, तमन्ना ने। गांव लुदेसर से पप्पू राम घाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका देवी, अली मोहम्मद। सिरसा से आप हैं सुभाष लूना, चिंटू स्वामी, अमन, अंजना, बुलबुल, मैनपाल लूना। जिला जींद गाँव दौरड़। श्रोता हैं श्री राम चहल, वीर सिंह चहल, कमल फौजी, हरिचंद, दया किशन ने। गांव सागवान हरियाणा से आप हैं शमशेर गुजर, पालाराम गुजर और मास्टर भूप। गांव चुलाना रोहतक से रामचंद्र रोहज, रामफल, सूरजा। और भाई गांव लाट से आप हैं सोनीपत का गांव केशव, अवि, अनवी, कपूर सिंह कौशिक, कृष्ण कुमार, राजेंद्र, खेतुराम, मांगेराम, प्रजापत, जय भगवान, यशवंत, रमेश और पूरा परिवार। और भाई आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा। आप सब की फरमाइश पे रागनी गायक कलाकार हमें रणवीर सिंह बड़वासनिया और उनके साथी।

और भी आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरियाणवी फिल्म गुलाबों का इस गीत के साथ में, जिसके गायक कलाकार हमें बाल सिंह, जनार्दन शर्मा, सविता और साथी। आप हैं गांव पांडू पिंडारा, जिला जींद का गांव। श्रोता हैं श्री बादल सिंगिल, श्रीमती कमलेश, टीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल और डॉक्टर वाणिका गिल। माधवान पाना जोजू कला से आप हैं विनोद कुमार प्रजापत, अंकित, तनिषा। जजर से भी बिट्टू भाटिया, रीटा, मयंक, रजत भाटिया। कस्बा जुलाना से पंडित महावीर शास्त्री। गांव चौधरीवास से भी राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रयाग, प्रियांशी। अजायब जिला रोहतक से ऋषभ देवनैन, सुबेदार मामन सिंह। तो सुनो भैये हरियाणवी फिल्म से गीत।

तो भैया आपने सुना हरियाणवी फिल्म गुलाबों से गीत का एक कलाकार थे बाल सिंह, जनार्दन शर्मा, सविता और उनके साथी। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति गायक कलाकार हमें सरिता चौधरी और उनके साथी फरमाइश साहब सबकी। चौधरीवास से भी राजू अग्रवाल, केशव अलख, चरणदास साथ में रेखा, महेंद्रगढ़ से विकास गांधी, ममता वंश, दिया नोनू, सुगुन विक्की गांधी, मटोर जिला कैथल से रामदिया, नीलम बोता, जयटक विजयटक, तमन्ना और भाई इससे रागने की फरमाइश भेजी है गांव लुहारी जाटू जिला भिवानी से रामपुर शर्मा, हरिकिशन शर्मा, हरिराम शर्मा, साथ में साधुराम, मदन सिंह, नौरंग दुकानदार, हरिराम प्रजापत, सेरा टेलर, गांव अड़ेवा जींद से नरेश लोहान, राजकुमार लोहान, जोगिंदर लोहान, रणदीप कश्यप और ये चिट्ठी आई है आदर्श गाँव कलंगा से श्रोता हेमा सुंदरपाल कौशिक, संतरा देवी, अभिनव कौशिक, निशांत, साथ में दिव्यांग दृष्टि, तोसानी, हिमानी, गाँव बड़ियाली से आप मास्टर भीम सिंह जी। तो आप सब की फरमाइश पे ये रागनी गायक कलाकार में सरिता चौधरी और उनके साथी।

तो ये थी आपकी पसंद कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सरिता चौधरी और उनके साथ थी इससे रागने के साथ भाई आवाज का आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल भाई दो इजाजत सारे मन भैया ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, संगीत है राहुल देवबर्मन का। लेकिन इस नगमे से पहले एक सूचना सुनिए। थाना सदर जिला जींद से प्राप्त सूचना अनुसार राजेंद्र पुत्र ताराचंद की पत्नी अपने घर से 7 अप्रैल से लापता है। इसका हुलिया आपको बता दें, रंग गेहूं और लंबूतरा चेहरा, माथे के दाएं तरफ चोट का निशान, कद 5 फुट 5 इंच, उम्र लगभग 45 वर्ष। इसके बारे में किसी भी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए थाना सदर जिला जींद से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा, फिल्म का नाम घर।

गुलजार का लिखा गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में आर डी बर्मन के संगीत के साथ। फिल्म का नाम था घर। कार्यक्रम का अगला नगमा लीजिए सुनिए तीसरी मंजिल फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं चित्चोर फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है यशुदास ने। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

यशोदास की आवाज़ में आपने सुना चितचोर फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं कटी पतंग फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, गीत के बोल रचे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये था हसरत जयपुरी का रचा गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम था झुक गया आसमान। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जब जब फूल खिले फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत के बोल रचे थे, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं गाइड फिल्म से शैलेंद्र सिंह का रचा गीत। संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये था ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म का गीत। SH बिहारी ने गीत के बोल रचे थे, संगीत था OP नैयर का। लीजिए सुनिए अनामिका फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत, जिसे रचा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना अनामिका फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था राहुल देव बर्मन का। लीजिए सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में पत्थर के सनम फिल्म का गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के।

ये था पत्थर के सनम फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी का रचा गीत। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। योगेश के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का। फिल्म का नाम है बातों बातों में।

ये थी आज के सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। सुगम संगीत कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे तलत अजीज। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद ठीक 9 बजे समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के

0: रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी

0: अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना कर

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने नाटक फिल्म के गीत, जिन्हें रचा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

भाई आपका स्वागत है, मैं हूँ नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें, आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा, यदि हम भी वही सब करने लगे तो। मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड।

0: रिकॉर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर

0: कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्ट एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे दो तीन वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाओ में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी, और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को

0: खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्यरत कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
5: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु

0: उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
1: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
2: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
1: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
2: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
1: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
3: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए। हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में, सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
2: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
1: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
2: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
4: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण।

0: बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहां था, मैं यहां हूं और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
6: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में PM मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS

मिनट हो चुके हैं। हमारे आज के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे कल सुबह 5:55 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।